नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई।

0: बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अति डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

हुने तुसी सुनिया अज दा ज्ञान अमृत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सरवन करते हैं भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की, आरती उतारी।

आओ हुण तुहानू जानकारी दी दिए अद अज रात तक प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्राम्स की। सवेरे 7:02 से तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर। सवेरे 8:40 से तुसी सुनोगे पंजाबी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम महक पंजाब दी। सवेरे 9:02 से तुसी सुनोगे शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम सुर साधना। इस प्रोग्राम च अज तुसी कलाकार पंडित हरविंदर कुमार शर्मा पासों सितार वादन राग मियाँ की मल्हार सुनोगे। 9:30 तुसी सुनोगे गजलां। सवेरे 10:02 ते पेश किया जाएगा प्रोग्राम हलो फरमाइश। तुहाडे मन पसंदीदा इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो। उहदे लिए तुसी नंबर डायल करना है 0181 23 42 173। उस तों बाद 11:05 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम तमक जलंधर पैंती। 12:05 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम वसदे वेड़े दा। इस प्रोग्राम च अज तुसी मेहमान ब्रूहा तो मनमोहन सिंह ते दिलजीत कौर होरा पासों कीती गलबात सुनोगे ते दोपहर 1:15 फौजी वीरां लई प्रोग्राम पेश किया जाएगा। बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे जी प्रोग्राम रंगली धरती। इस प्रोग्राम च अज तुसी बलदेव सिंह सिखरे होरा दे गीत सुनोगे। साड़ी दूजी सभा च शाम 4:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सदा बहार गीत। शाम 4:30 असी तुहानू ले चलांगे गुरु नगरी अमृतसर, जिथे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे। उस तो बाद शाम 5:30 तुसी सरवण करोगे गुरुवाणी विचार। देहाती प्रोग्राम होवेगा जी शाम 6:30। इस चज तिलां दी काश्त बारे जानकारी दित्ती जावेगी ते जानकारी देंगे डॉक्टर अमित कौल। शाम 7:00 के

0: रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यदर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीयदिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटनदिवसे च 12,000-तोप्यधिकाः तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोजसिंहा श्वः नुवान पहलगाम इति आधारशिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्मपुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः, मेघगर्जनं, विद्युत्पातः, प्रचण्डचक्रवाद्वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु 4 दिनेषु गुजरातराज्यस्य कतिपयभागेषु, हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु 2-3 दिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़क्षेत्रे विकीर्णरूपेण वृष्टिः सम्भाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बियादेशस्य लब्धप्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूसदेशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकलक्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साड़ी स्टूडियो दी कड़ी मुताबिक सवेर दे 7 बज रहे ने ते हुन पेश ने अज दियां मुख्य खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया अते न्यूजीलैंड दे 6 दिना दौरे ते होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोहा विच कतर दे प्रधानमंत्री अते विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रमन बिन जस्मीन अल थानी नाल मुलाकात की। दोवां नेतावां ने दुवल्ले सहयोग दे वख-वख पहलुआं दी समीक्षा की। पेट्रोलियम बरामदकार देशों दे संगठन ओपैक प्लस ने इस साल अगस्त तो तेल उत्पादन विच 188,000 बैरल प्रति दिन वाधा करन लई सहमति प्रगटाई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नवी दिल्ली विच सहकारिता मंत्रालय दी 5वीं स्थापना दिवस समारोह विच शामिल होंगे। भारत आज असाम दे गुवाहाटी विच शुरू होने वाली 2 रोजा ब्रिक्स नशा विरोधी एजेंसियां दे मुखिया दी मीटिंग दी मेजबानी करनगे। अमले लोक शिकायतां अते पेंशना बारे राजमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय मजदूर संघ BMS अते संबंधित मुलाजमां जथेबंदियां दे एक वफद नाल सरकारी मुलाजमां पेंशनकारां अते प्रशासनिक सुधारां नाल जुड़े कई मुद्दियां ते चर्चा करन लई मुलाकात कीती। पंजाब दे पट्टीदर्ज जाता नाल संबंधित विद्यार्थियों लई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम साल 2026-27 दा पोर्टल अधिकारक तौर ते खोल दिता गया है। साबका केंद्रीय मंत्री अते भारतीय जनता पार्टी दे सीनियर आगू विजय सांपला ने इल्जाम लाया है कि सूबा सरकार वल्लों उन्हां नूं कानूनी प्रक्रिया दे उल्ट कदमां राहीं परेशान किया जा रहा है। अते चंडीगढ़ सहित मौसम विभाग ने अज तो 9 जुलाई तक पंजाब हरियाणा दे ज्यादातर हिस्सों दे नाल नाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल भारी मीह दा येलो अलर्ट जारी कीता है। ऐसन अज दियां मुख खबरां।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम सोनी सवेर बस कुछ ही पला चे।

बिल्कुल जी, सुबह सुहानी है क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है सोनी सवेर ते नाल हो रही ने सोनिया सोनिया गल्ला ते तुसी इंजॉय कर रहे सी गीत के जे येसुदास की आवाज़ जो बहुत सोहना जहा गीत सी। ते दोस्तों हुन वेला हो चुके है जी प्रोग्राम च अज दे पॉजिटिव विचार। दोस्तों असं अक्सर सोचते हाँ कि अपने मन की गल जी है वह किस नाल सांझी करिए। कई बार बहुत सारिया मन च अजिहियां गल्लां चल रही होंदियां ने जिहड़ियां असं अक्सर कई बार सोचते कि असं किसी नाल नहीं शेयर कर सकते हाँ, पर कई बार अजिहा भी हुंदा है कि कोई सानू पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। अजे वेले एक रिश्ता जिहड़ा ना दोस्तों वो कदे नहीं टुटता, उत्ते विश्वास जिहड़ा ना हमेशा कायम रहिंदा, ते वह है जी रब नाल साडा रिश्ता। रब नू वड्डे वड्डे शब्दों की लोड़ नहीं हुंदी, वह तां साडे दिल की हर धड़कन हर हंजू हर अरदास नू बिना कहे समझ लैंदा है। इसलिए जदों भी मन भारा होवे अपनी गल रब नाल सांझी कर लईए। दो कन्ना वाले नालों कहिंदे ने अंग संग जिहड़ा वसदा ना, जेकर उहदे नाल मन की गल सांझी कर लईए ना तां फिर सुकून तो मिलता ही है ते गल भी जल्दी सुनी जाती है। ते इसलिए जदों मन भारा होवे अपनी गल जिहड़ी है ना वह रब नाल सांझी कर लिया करो। हो सकता है जवाब जिहड़ा ना वह तुरंत ही मिल जाए ते हौसला भी मिले। ते दोस्तों फिर अज दा जिहड़ा पॉजिटिव विचार है वह ही कहिंदा है कि दुनिया तो पहला अपने दिल की गल जिहड़ी है ना वह अंग संग वसदे इस रब नाल करो, क्योंकि वह सुनदा भी है समझदा भी है अते सही वेले राह भी सानू दिखाता है। ते इसी सोहनी जी सोच दे नाल आओ प्रोग्राम च अगे वधदे आ। ए आर रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान की आवाज़ च कुछ इसी पॉजिटिव थॉट नू दर्शांदा इस सोहना जिहा गीत।

प्रोग्राम सोनी सवेर आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों जिवें कि असी हर रोज़ किसी ना किसी खास दिन की गल करते हैं प्रोग्राम सोनी सवेर च, उस तरह अज की जेकर असी गल करिए 6 जुलाई नू दोस्तों दुनिया भर च वर्ल्ड जूनोसिस डे जिहड़ा है वह मनाया जाता है। सब तो पहला जानते हैं कि यह जूनोसिस हुंदा की है। जूनोसिस दोस्तों वो बीमारियां हुंदियां ने जो जानवरों तो इंसानों विच ते इंसानों तो जिहड़े जानवर ने उन्हां च फैल सकदियां ने, जिवें कि रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू या फिर कोई होर जिहड़े वायरल इन्फेक्शनस ने उन्हां बारे। तो दोस्तों यह दिन इसलिए मनाया जाता है, पिछे मोटिव जिहड़ा है कि जिहड़े लोग ने उन्होंने इन्हों बीमारियों प्रति जिहड़ा है वह अवेयर किया जा सके, जागरूक किया जा सके, तो यह समझाया जा सके कि जेकर थोड़ी जी सावधानी नाल असी अपनी अते अपने परिवार की सेहत की किवें रख्या करनी है, जेकर असी इन्हों प्रति अवेयर होवांगे तां ही जो है असी सावधान होवांगे, जे अलर्ट होवांगे तां ही बचाव हो सकेगा। तो कुछ सौखियां गल्लां ने जो तुसी हमेशा याद रखनिया ने। इस दिन का जिहड़ा मेन मोटिव है वह यही है कि लोगों नूं अवेयर किया जा सके। सब तो पहला जेकर तुहाडे घर पालतू जानवर है, अपने पालतू जानवर का समय समय से दोस्तों टीकाकरण जिहड़ा है वह जरूर करवाओ। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बीमार जानवर नाल बिना जिहड़ा लोड़ है ना वह संपर्क ना करो। जानवरों नूं छूण तो बाद हाथ जिहड़े ने वह जरूर साबण नाल चंगी तरह धोने है। जे किसी जानवर की कट्टन या फिर खरोच लगन की घटना हुई है तो तुरंत जिहड़ा वह डॉक्टर नाल संपर्क करो। दोस्तों अज्ज दे समय च वन हैल्थ जिहड़ी है ना उसकी सोच नूं बहुत इंपोर्टेंस जिहड़ी वह दित्ती जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण मनी जाती है। इसका मतलब है कि इंसाना जानवरां अते वातावरण की सेहत आपस में जिहड़ी है ना वह जुड़ी हुई है, कनैक्ट ने सारे। जे

कैलाश खेर दी आवाज़ च तुसे सुन रहे सी जी दिल नू छू लैन वाला एक गीत ते प्रोग्राम सोहनी सवेर च हुण वधदे आ जी अगे। ते दोस्तों जिवें कि असी पहला भी गल कीती कि जिहड़ा बेशक कैलेंडर दे विच जिहड़ा दिन है जिहड़ी तारीख है वह बदलती है, लेकिन नाल दे नाल अपने नाल कोई ना कोई इतिहास जिहड़ा वो जुड़िया हुंदा हर तरीक दे नाल। ते दोस्तों अज दा दिन जिहड़ा वो एक होर महान जिहड़ी शख्सियत नू याद जिहड़ा वो दवांदा है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम चल रहे जी सोहनी सवेर, ते प्रोग्राम सोहनी सवेर आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों आज दा दिन होर महान, एक होर महान शख्सियत दी याद नाल जिहड़ा है वो जुड़िया होया है। अज यानी कि 6 जुलाई जिहड़े वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दी जन्म जयंती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे बारे जेकर असीं दोस्तों गल करिए, ते उहनां दा जन्म जिहड़ा वो 6 जुलाई सन 1901 नूं कोलकाता विच होया सी। वो एक प्रसिद्ध सिख्याविद, वकील, चिंतक ते राजनेता सन। बहुत छोटी उम्र च दोस्तों दस्या जांदा है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र च ही वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी दे सब तो नौजवान वाइस चांसलर बने, जो कि अपने आप विच ही एक बहुत वड्डी, उस टाइम ते बहुत वड्डी उपलब्धि सी। आज़ादी तो बाद वो भारत के पहले उद्योग ते सप्लाई मंत्री भी रहे। बाद विच दस्या जांदा है कि उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसनों अज दी जिहड़ा अज भारतीय जनता पार्टी दा जिहड़ा वो पूर्व रूप मन्या जांदा है। डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता, सिक्ख्या ते राष्ट्रीय हितां लई बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों योगदान दिता। उन्हां दे विचार ते कम जिहड़े ने वो अज भी याद किए जाते हैं, ते अज उन्हां दी जन्म जयंती ते असी उन्हां नूं सत्कार नाल याद करदे हां, ते उन्हां दे देश सेवा दे जज्बे नूं असी नमन करते हैं। दोस्तों जिहड़ा भी दिन जदों इस तरह दे वड्डियां शख्सियतां जिन्हां ने देश दे लई कुछ कीता है, सानूं उन्हां तो सीखण दी लोड़ है, क्योंकि जिहड़ियां आने वाली जनरेशनस ने, क्योंकि कहिंदे ने कि हर कोई जिहड़ा वो अपने लिए तो जी लैंदा है, लेकिन जदों असीं दूजियां लई जीने आ ते असल जिहड़ी इंसानियत है, असल जिहड़ा इस दुनिया च आन दा जिहड़ा मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो अजिहियां जिहड़ियां शख्सियतां ने जिवें कि अज 6 जुलाई असीं गल कर रहे सी कि चाहे वह बाबू जगजीवन राम जी होन या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होन, अजिहियां जिहड़ियां शख्सियतां ने इन्हां दे जीवन तो सानूं सीखना चाहिए है। तो जो इन्हां दे विच जज्बा सी उस जज्बे नूं ही, उस जज्बे तो प्रेरित होकर अपने जीवन च अग्गे वधना चाहिए है। लो जी, सुखविंदर सिंह, श्रेया घोषाल दी आवाज़ च अगला गीत इंजॉय करो।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व

0: और स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
2: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स थी ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश करन जा रहे हैं प्रोग्राम महक पंजाब दी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म टौर बन जाओगी जो हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला दा गाया गीत। बहुत सोहना जिहा गीत है जी, करो इंजॉय।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने तो बोल रहा।
1: फिर तो
2: तुसी डिजिटल अरेस्ट विचो दूजे कमरे विच जाओ। इकल्ले तुहाडे पार्सल विच ड्रग्स मिले हन, लम्मे अंदर जाओगे।
3: 10 लाख दियो, बच जाओगे।
1: सर इन्हें कितों ले आवां?
3: एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लई
2: 2 लाख भेजो, बाकी बाद विच।
1: सर 2 लाख
4: की होया पापा?
1: बेटा ये कह रहे हन मेरे पार्सल चो ड्रग्स मिले हन।
2: ओए
1: कट दिता।
4: घबराने दी लोड़ नहीं पापा, डिजिटल अरेस्ट जिहा कुछ नहीं हुंदा, ए सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आउण वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जां वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नूं कोई पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नूं रिपोर्ट करो। जे तुसी सियाणप नहीं विखाओगे
3: तां पैसे गवाओगे। RBI कहिंदा है
5: जानकार बनो, सुचेत रहो।
0: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਸਪੋਂਸਰਡ ਜਾਂ ਗੈਟਸ ਮੋਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਹੈ।
6: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਸੌਕਨ ਸੌਕਨੀ 2 'ਚੋਂ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ ਗੀਤ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते यह आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी महक पंजाब दी, तो इस प्रोग्राम च आखिरी गीत सुनान जा रहे फिल्म यारा नाल बहारा चो अमरिंदर गिल ते सुनिधि चौहान दा गाया गीत। लो जी, इंजॉय करो।

वाह जी वाह। दोस्तों हुने तुसी चंदन दास जी दी दिल नू छू लैन वाली गज़ल सुनी। गज़ल दी दोस्तों खूबसूरती यही है कि ये कदे सफ़र दी गल करदियां ने, कदे यादां दी ते कदे उन्हां अहसासां दी जिन्हां नू शब्दां विच बयां कर

वाह जी वाह, बहुत सोहनी गज़ल तुसी सुनी जगजीत सिंह जी दी। सदाबहार गज़ल हर अल्फाज विच प्यार दी नरमी ते एहसासां दी डूंघाई महसूस हुई है इस गज़ल चों। दोस्तों, जिंदगी दा हर सफ़र आसान नहीं हुंदा, कदे राहां विच मुश्किलां आउंदियां ने, कदे इम्तिहान, पर यही सफ़र सानू होर मजबूत भी बनाता है। गज़लां भी अक्सर इन्हां ही जज्बातों बड़ी खूबसूरती नाल बयान कर जांदियां ने। हुण इसे एहसास नू अपनी बेमिसाल आवाज़ विच पेश कर रहे ने गुलाम अली साहब। दी सुनो ए दिल नू छू लैण वाली गज़ल।

दोस्तो, हुने तक इस महफिल च असी सुनिया मुहब्बत, यादा, उम्मीदा ते जिंदगी दे अनेक रंगा नाल भरिया खूबसूरत गज़लां। हर गज़ल ने अपने अंदाज विच दिल नू छोया ते कुछ एहसास साढ़े नाल सांझे कीते। हुण वेला है अज दी इस महफिल दी आखिरी पेशकश दा, आखिरी गज़ल दा। आखिरी गज़ल कहिंदे ने हमेशा एक मिठी जिही याद बन के रह जाती है, बिल्कुल उन्हां खामोश लफ्ज़ां वांग जो दिल विच लंबे समय तक गूंजते रहिंदे ने। ते आओ जी, अज दी इस महफिल दी आखिरी गज़ल सुनदे आ चित्रा सिंह जी दी रूह नू छू लैण वाली आवाज़ विच।

0: बिल्कुल जी, उम्मीद करते हैं सारे फर्स्ट क्लास होंगे। तो प्रोग्राम हलो फरमाइश अपनी कॉल जी ट्राई कर रहे होंगे। फिलहाल आओ जानते हैं सब तो पहली कॉल किना दी आई है, किड़े कॉलर दोस्त ने सानू ज्वाइन किया। हेलो,
1: मैम
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
1: जगतार सिंह गिल जी, पिंड भंगाला जी, जिला फाजिलका, तहसील अबोहर तो बोलदा मैम।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: हाँ जी, किवें दा मौसम है जी उत्थे तुहाडे?
1: मौसम अज बदलवाई जी है मैम, हवा तेज है जी,
0: मीह पिया?
1: हवा हवा चली आंदी है जी, बदलवाई जी है। हाँ
0: अच्छा जी, चलो
1: जी
0: सोना हो जाएगा मौसम, गर्मी तो राहत मिलेगी। अग्गे हले अलर्ट है आने वाले दिनों तक।
1: हाँ जी ऐसी तो ना जी, मी 2-3 दिन झड़ी लग जाए ना जी, साढ़े तो फिर
0: हाँ
1: जाके साडा इधरों काल निकलता जी, इन्नी गर्मी है जी, तो बुरा हाल है इधर तो सानू।
0: हाँ जी, हाँ जी, चलो फिर अज तुहाडी कॉल लगी, किन्ने दिनों बाद कॉल लगी तुहाडी?
1: कई दिनों बाद लगे, कुछ हो गए ने 10 दिन
0: चलो 10 दिन
1: 15 दिन।
0: बाद कॉल लगी। फिर केड़ा गीत सुनना तुसी?
1: फिल्म है जी आज का दिन जी, गीत है जी गोरी है कुलैया जी।
0: ठीक है जी, जरूर कर दिया तुहाडी फरमाइश पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए,
1: जी
0: सत श्री अकाल जी। लो जी, आज का अर्जुन इस फिल्म चो है लता मंगेशकर ते शाबीर दी आवाज़ गीत सुनना चाहते ने, जरूर कर देना दी फरमाइश पूरी। तो थोड़ी भी फरमाइश असी पूरी करनी है जी, 1 घंटा इस प्रोग्राम च असी थोड़ी

0: आशा भोसले दी आवाज़ च बहुत सोहना जहा गीत तुसी इंजॉय कर रहे सी प्रोग्राम हलो फरमाइश आओ जानते हैं हूँ अगली फरमाइश केड़े कॉलर तुसी लेके आए ने हलो
1: हेलो
0: नमस्कार जी
1: नमस्कार मैडम जी
0: हाँ जी कौन बोल रहे ने जी
1: मैं मोहन सिंह पिंड पंडारा तो बोल रहा हूँ जिला फाजिलका तहसील बोर जी
0: बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा
1: जी मैडम थोड़ा भी जी
0: हाँ जी अज किन्ने दिन बाद कॉल लगी थोड़ी
1: मैडम ये महीना हो गया जी बहुत ट्राई करी जाते चल लग ही गया जी
0: चलो अज फिर थोड़ा लक्की डे हो गया थोड़ी कॉल लग गई खुश हो
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी खुश हैं जी
0: हाँ जी खुश ही रहना चाहिए
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी
0: हाँ जी फिर केड़ा गीत सुनना है आज प्रोग्राम च तुसी
1: पूरी फिल्म ला दे जी पूरी नंबर 1 दा जी
0: ठीक है जी कोई भी गीत
1: कोई गीत ला दे मैडम जी धन्यवाद
0: ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई
1: जी मैडम जी
0: धन्यवाद जी लो जी कुली नंबर 1 फिल्म चो कुमार सानू ते साधना सरगम दी आवाज़ च गीत सुनान जा रहे हैं तो प्रोग्राम हलो फरमाइश अपनी फरमाइश तुसी सानू दस सकते हो 0181 243173 नंबर डायल करके इंजॉय करो ये गीत

0: प्रोग्राम चल रहे जी। हेलो फरमाइश आओ जानते इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश केड़ी कॉलर दोस्त लेके आए ने। हेलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने जी?
1: बलजीत सिंह, पिंड बजीतपुर तो मां भैन जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद धन्यवाद जी तुहाडा भी।
0: हां जी, केड़ा गीत सुनना जी अज तुसी?
1: चांदनी फिल्म दा सुना रहे हो जी, आंखों में नौ नौ चूड़ियां है।
0: ठीक है जी, जरूर पूरी कर दें थोड़ी फरमाइश। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। लो जी, चांदनी फिल्म चो लता मंगेशकर दा गाया गीत इन्हां दी पसंद जरूर पूरी कर रहे हैं, तो हाले भी थोड़ा जा समा बाकी है, तुसी फिलहाल इंजॉय करो ये गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा है कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फीफा में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। फीफा विश्व कप के एक अन्य मैच में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 347.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 11:05 हो रहे ने, आओ हुण सुनदे हां।

प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। आओ शुरुआत करदे हां प्रोग्राम दे पहले गीत पंजाबी गीत शाजिया मंजूर दी आवाज़ दे विच।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: प्रोग्राम चल रहा जी, तमक जलंधर पेंदी ते स्रोतियो जल्दी जल्दी नंबर नोट करो जी, 94-65-53-60-77। साढ़े को बहुत सारे मैसेज आज भी रहे ने ते होर भी साढ़े स्रोते जिहड़े आ सानू होर मैसेज करन, ताकि असी तुहाडे पंजाबी फरमाइशी गीत सुनाईए तुहानू ते तुहाडियां फरमाइशां पूरियां करिए। साढ़े कोल अगली फरमाइश पहुँची है जी, सुखदेव कलेर, नरेश कलेर, संतोष राणी, पूजा राणी, पुनीत निगाह ते पोत्रा सुखदीप कलेर, ते वार्ड नंबर 1 बला चौर तो। ते अगली अगला मैसेज साढ़े कोल, अगला संदेश पहुँचा जी, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो, ते ये लिख रहे हैं जी सानू मैसेज जनकपुरी सहारनपुर तो। अगला मैसेज साढ़े कोल पहुँचा कलानौर तो, नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक। अगली फरमाइश पंजाबी गीत दी कीती है जी कृष्ण बागला, आशा बागला, साजन बागला, प्रिंस बागला, रजनी, आंचल वंश। ये लिख रहे हैं जी मैसेज पिंड थे कलंदर तो, सावत खेड़ा।

0: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
1: प्रोग्राम चल रहा जी वट्सअप मैसेज से आधारित धमक जलंधर पेंदी तुसी भी सानू अपने मैसेजिज होर भेज सकते हो। साडा नंबर नोट कर लो जी, वट्सअप नंबर है 9956 5670। तो साढ़े कोल होर फरमाइशा पहुँचिया है जी चंडीगढ़ तो राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान, वीना तुलसी, आशीष चैतन्या, मेघा, विजय गोयल बजीतपुर कातियां वाली तो फाजिलका तो पूरा परिवार। तो इन्हां दे नाम है जी जगदीश गोयल, अश्विनी अंगूरी, संजू अंजू, संदीप बनवारी। मेन मार्केट रेलवे स्टेशन छींटा वाला तो लिख रहे हैं जी प्यारा सिंह सिद्धू ते मनदीप सिंह सिद्धू, बिल्लू पाली। उत्तराखंड तो सानू मैसेज किया है जी जसपुर उत्तराखंड तो रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत मुहम्मद, रिहान समरीन, परवीन माहिरा नूर। तो अगला मैसेज साढ़े को पहुँचे है जी ज़िला मुरादाबाद तो पिंड दुलापुर उत्तर प्रदेश तो फरमान सलमान इरफान इसरार नरगिस खातून। फिलीपींस मनीला तो सानू मैसेज किया है जी मदन मोहन लहर, सरबजीत लहर, संजू नीतिका, अजय एंजल, अर्नव लहर। तो इन्होंने सानू कहा जी जगजीत सिंह का कोई भी पंजाबी गीत सानू सुना दिओ। पिंड वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह सिद्धू, भूरा सिंह गहलोत, राजा वड़िंग, पिंड वजीतपुर तो भोमा वजीत सिंह तो भोमा तो बलजीत सिंह। अगली फरमाइश साढ़े को पहुंची है जी मंगत राम, जगदीश, संदीप, मिधा, ममता राणी, अभिषेक, दिव्या। झारखंड तो सानू मैसेज किया है जी एस एम जावेद ते गुमला ने। तो लो जी इन्हां सारियां दी रली मिली फरमाइश ते तुहानू सुनाउण जा रहे हैं जी जगजीत सिंह दी आवाज़ 'च ये गीत।

0: ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा।

0: जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक परमबनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश कर रहे हैं प्रोग्राम बस दी विड़ी।

0: नमस्कार।
1: वज़े बड़े प्रोग्राम लेके हाजिर हाँ जी, मैं प्रिया और मेरे नाल ने
0: जी मैं पूनम भी हाजिर हाँ। सारे ही सुनने वाले नमस्कार। प्रिया जी तुहानू भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार पूनम जी। ते भी अज मौसम तो साढ़े इत्थे ना शहर जलंधर दे विच बड़े बदल पए सीगे, है ना, पर मीं किते किते ही पिया मैनू लगदा।
0: वैसे जदों आसमान च बदल आउंदे आ ते इक उम्मीद भी बन जांदी है, मन अपने आप ही उड़ीकण लग जांदा है फुहारां नूं किण मिण, ते इह जिहड़ी त्रिश बणदा साढ़े सामने ना एक मन दे विच खुशी लैके आउंदा है। ते इह आगमन इस चीज़ का भी है कि मानसून आ चुका है
1: जी। ते नाले तुसी देखो कि हल्का भी जे मीह पवे ना उस तो बाद जे असी सड़कां ते निकलीए हरियाली का जिहड़ा रंग है, जिहड़े पत्तियां का रंग है, पेड़ां दी जिहड़ी तुसी कहो ना कि उन्हां दे भी चेहरे ते एक अलग जिही मुस्कुराहट तुहानू नज़र आंदी है, बहुत ही खिड़े खिड़े लगदे ने सारे।
0: बिल्कुल जी, जो भी प्रदूषण दे नाल उन्हां ते धूड़ मिट्टी पई हुंदी है ना, ते उह जदों उह धोते जांदे ने रुख पत्ते पेड़ पौधे फुल इह सब इस तरह निखर के आउंदे ने जिवें उन्हां नूं हुणे हुणे नहलाया होवे।
1: बिल्कुल। ते मैं ये भी कई बार नोट किया कि भी असी ना घरां दे विच बूटे लाए होंगे ने, चाहे गमलियां च लाए होन, छोटी छोटी क्यारियां च लाए होन, उन्हां नूं जदों असी बाल्टी ते मग ना पानी देने हैं ना, वो इस तरह नहीं खुश सानू नजर आते, खिड़े खिड़े नहीं लगते, पर मीह तो बाद ना इदां लगता कि नचते पए होन जिवें।
0: देखो ये जो कुदरती मिलन है ना बरसात ते पौद्यां दा पानी दा फुहार दा ताजगी दा, ये इस दे नाल दी कोई रीस नहीं है। कुदरती जो कुदरती चक्कर है उसे विच सब कुदरत दा जो संतुलन बनता है तालमेल बनता है
1: जी
0: वो देखा ही बनता है
1: जी। और यही हरियाली जिहड़ी है वो साढ़े आस पास जिहड़ी है साढ़े जीवन का हिस्सा इसे तरह बनी रहे, उस दे करके असी किन्ने ही साल हो गए देखो जी वन महोत्सव बनाने आ रहे।
0: बिल्कुल जी, तो इसलिए मनाने ताकि असी ये जो हरियाली अपने आस पास देखते हाँ, खास तौर पर बरसातों के दिनों के ना जी होर भी खूबसूरत तरीके दे नाल साडे सामने आती है, इस तरह बनी रहे, क्योंकि जिस तरह वड्डी गिणती दे विच साडे आस पास हरियावल घटती जा रही है, कंक्रीट वधदा जा रहा है, आने वाला जो समा है वह खतरनाक साबित हो सकता है। साडे आस पास हरियावल ही ना हो ता सोच के भी किंज महसूस होंदा है।
1: बिल्कुल। और ये जिहड़ी हरियावल है ना इसके ना होने के पिछे कारण यही है कि भई असी बूटे तो बहुत ले लैने है ना, खरीद के भी लियाने, और अजकल तो रिवाज भी चल पे कि बूटे ही जिहड़े ने गिफ्ट विच दिते जांदे ने, पर वो बहुत छोटे छोटे पौधे होंदे ने, और सानू हमेशा ही लगता है कि असी गमलियां दे विच छोटे छोटे गमलियां दे विच अपने आस पास पौधे लगा लेने ते चलो जी कुदरत दे प्रति जिहड़ा साडा फर्ज है वो असी निभा लिया है ना
0: जी। पर जिहड़ा साडा फर्ज है ना उस तो बाद ही शुरू हुंदा है जदों असी एक पौधा लगाउंदे हां जां अपने घर दे विच पौधा लैके आउंदे हां। प्रिया जी कुछ किताबां भी ने, कुछ इहो जिहियां खोजां भी ने जिन्हां दे विच कहा गया है, साबित करने की कोशिश की गई है कि जे ये पेड़ पौधे बोलते होंगे साढ़े नाल संवाद करते होंगे तो सानू की कहिंदे कि उन्हां नूं भी उन्नी ही खाद की लोड़ है, वह भी उस तरह महसूस करते हैं, वह डरते हैं खुश होंगे ने, तो ये जिहड़ा लगाव है ना इंसान उदों महसूस कर पाउंदा है जदों उसका वाकई मन तो प्यार हुंदा है उन्होंने संवारण का सजाउण का उन्होंने केयर करन का।
1: बिल्कुल। ये भी ना एक तरह का रिश्ता ही है, मैनू लगता है कि जदों असी कोई बूटा लाने खास तौर पर कई लोग होंगे ने, मैं इहोजे लोगों नूं जानदी हां परसनली निजी तौर पर कि भी वह किसी अपने घर का कोई भी जी हुंदा है उदे जन्मदिन ते एक बूटा लांदे ने, और कई बारी उही उन्हां दी एक ना याद भी बनता है, और उसे याद नूं संजोन दे विच उह उसकी देखभाल करनी शुरू कर देंदे ने
0: जी। बिल्कुल जी, रुखां दे नाल जो लगा है ना उससे बहुत सारे कवितावां लिखिया गई ने, बहुत सारी शेरो शायरी हुई है, लिखतां लिखिया गई ने, बहुत सारे इहो जे लोग ने जो रुखां दे नाल बहुत लगाव करते हैं, कई अंदोलन चले ने जो रुखां नूं लै के ने। जेकर असी साडे देश दे महान गायक किशोर कुमार उन्हां दी गल करिए ना, उन्हां दा रुखां नाल बड़ा प्यार सी, अपने घर दे विच जो रुख लगाउंदे सन उन्हां दे नाम भी रखदे सन, उन्हां दे नाल गल्लां बातां भी करदे सन, ते रुखां दे नाल उन्हां दे जो किस्से ने ओह वी बड़े मशहूर ने।
1: बिल्कुल। ते जापान दे विच इहो जी कहानी जिहड़ी उन्हां दी है दंत कथा फोक टेल ही है, जिस दे विचों कहिंदे ने या कहा जांदा कि भई साइकोलॉजी दे जिहड़े ने माहिर उन्होंने एक्सपैरिमेंट्स किए ने कि एक जिहड़ा छोटा जिहा बूटा है जे तुसीं उहनूं नैगेटिव बुरे शब्द कहोगे उहनूं कोसोंगे ते उह मुरझा जांदा है, पर इसे तरह जे उसनूं तुसीं हल्लाशेरी दिंदे हो ते भई उह किद्दां फलदा फूलदा, इहदा मतलब है कि उह वी साडे वगर महसूस करदा चीज़ां।
0: बिल्कुल जी, जेकर असीं अपने बच्चिआं नूं जदों पालदे पोसदे हां उहनां नूं असीं उत्साहित करन दे लई कुछ शब्द कहिंदे हां, कुछ उन्हां दे लई असीं इहो जे शब्दावली दा इस्तेमाल करदे हां जिस नाल ओह होर जिंदगी प्रति उत्साहित होण, आशावादी होण, ते एनर्जेटिक तरीके दे नाल होर अपना कामकाज कर

0: छोले ऐसा
1: जी,
0: सी।
1: फिर तुसी मनमोहन सिंह जी उंगलियां चट्टिया सी, बड़ा मजा आया सी,
2: तुसी
1: स्वाद लगया सी।
2: कह भी सकते हो उन्होंने दिनों
1: चलो
2: जी,
1: तुहानू पुराना वेला याद करा
2: पुराना
1: रहे
2: वेला,
0: क्योंकि
2: बिल्कुल
0: वो पुड़िया
2: पुराना वेला
0: तलदे
2: याद
0: मेरा हाथ
2: आया।
0: जल गया सी थोड़ा
2: ओ
0: जा।
2: देखो ना जी, अजकल मैं देखिया भी मुंडा कुड़ी पहला मिलते हैं और लव मैरिज बहुत ज़्यादा होंगी है, और उन्होंने विचों काफ़ी ज़्यादा तुम कह लो भी 90% ही मैं तो कह सकता जिड़ियाँ सक्सैस नहीं होंदिया, तो अरेंज मैरिज जिड़ियाँ वो काफ़ी हद तक सक्सैस रहिंदियाँ। जिन्होंने याद करते हुए मैनू एक शेर याद आया, कहिंदे जवानी दी भुल सदा रड़कती रहिंदी, चोरी छपे जो ला लैंदे ने मेहंदी, मर्जी दी करा ली जे किधरे शादी, तितली उडारू करू बर्बादी, रवेंगा तू खुश पुछ आके तू मैनू, रोण व्यो कर दे ओ कनबा भी तेनू। सो
1: ये शायद थोड़ी कलम ने आप ही कागज के उत्ते लिखिया
2: तुसी
1: होया
2: कह सकते
1: जी,
2: हो।
1: क्योंकि सानू पता लग्या कि तुहानू लिखण दा भी शौक है।
2: हाँ, मैनू लिखण दा भी शौक है ते पढ़न दा भी बहुत ज़्यादा, पंजाबी खास करके पंजाबी पढ़न दा बहुत शौक है।
1: जी
2: जिहड़े अच्छे अच्छे कवि उन्हां दे विच जा के सुनना, ते अच्छे अच्छे कवि जिद्दां प्रोफेसर मोहन सिंह नू भी सुनना, भाई ईश्वर सिंह नू भी काफ़ी, बहू
1: जी
2: नानक सिंह दे नाटक नू काफ़ी पढ़ना, तो इस
1: जी
2: तरह थोड़ा बहुत शौक रखदा
1: शौक
2: मैं
1: है गे
2: जिहड़े वेले टाइम।
1: जी, यानी कि साहित्य प्रेमी हो तुसी
2: जी कह सकते हो तुसी।
1: जी। ते दलजीत जी, तुसी साहित्य दे नाल या पढ़न लिखन दी रुचि है तुहाडी?
0: मेरी हॉबी हैगी पेंटिंग ते म्यूजिक। म्यूजिक च मैं कीर्तन किया होया है,
1: जी
0: ते ए मेरी दो हॉबीज हैगियां।
1: जी
0: पेंटिंग च मैं पॉट पेंटिंग कीती हुई है,
1: जी
0: सूट भी मैं बहुत पेंट करती सी। ते कि नाम है, मेरे फादर इन लॉ AMD रिटायर्ड होए ने, बहुत ही लविंग सीगे, बड़ा इनकरेज मैनू उन्होंने किया। उन्होंने मैनू जदों ब्याह के मैं आई तो उन्होंने मैनू कहा कि बेटा जॉब कर लो बैंक च। मेरे हस्बैंड थोड़ा लाइक नहीं करते सी, ते फिर मैं जॉब ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर अपनी फैमिली ने मैं प्रेफरेंस दी, ते उदा ही चलो ए नहीं कि जरूरी कि लाइफ च जॉब करनी, एक हाउसवाइफ दी जॉब भी एक उन्नी ही टफ है,
1: बिल्कुल ठीक।
0: अपने परिवार नू सामना। मेरे दो बेटे हैं, हिरदे जीत सिंह और प्रीत कंवर सिंह, डॉटर इन लॉ, हूँ एक बड़े बेटे की मैरिज की है,
1: जी
0: 6 साल हो गए। मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरी बेटी की कमी पूरी की है।
1: जी हम
0: छे
1: डॉटर ला दे, एक डॉटर है
0: हाँ जी हाँ जी, 2.5 साल की उदी भी एक डॉटर।
1: जी
0: मेरी ग्रैंड डॉटर भी बड़ी स्वीट है, बड़ी लविंग है। जदों सानू प्यार ना दादी मम्मा बोलती है ना, तो इस तरह लगता है बस
2: घर विच फुल खिड़
0: घर विच फुल खिड़ गए,
2: गए
0: मतलब इस
1: हाँ,
0: तरह
1: यानी कि रौनक आ गई
0: रौनक
1: है।
0: बहुत बहुत सही
1: जी
0: बहुत।
1: हाँ जी, मनमोहन सिंह जी अक्सर कहते हैं कि धियां ही घर की रौनक होंदिया ने, वो वेड़े चहकते ने रौनक दे नाल भर जाते ने, जिथे कुड़ियां किलकारियां मारदियां ने।
2: बिल्कुल तुसी सही कहा हैगा, जिथे तियां तियां ही होंदियां। साडे घर दे विच जदों ये बच्चा आया मेरी यानी कि पोती आई, ते तकरीबन मैं इन्ना क खुश सीगा कि जिस दी खुशी तुहानू मैं जाहिर नहीं कर सकदा। ते मैनू जितना तक उम्मीद है, साडे माता जी भी ये कहिंदे सी कि साडी सिस्टर तकरीबन 53-54 साल दी, 54 साल बाद साडे घर लक्ष्मी आई है,
1: अरे वाह,
2: ते असी ओनू खुशियां दे नाल, लोकी कुड़ियां दी देखो लोहड़ी नहीं मनांदे जन्मदिन, पर मैं जन्मदिन भी मनाए ते लोहड़ी भी मनाई,
1: हुण बदलदा पिया हौली हौली ट्रेंड।
2: ते इस करके धियां धियां ही ने। ते मैनू इदां लगदा है भी ये लक्ष्मी जिहड़ी है साडे घर जिथे धन दौलत लै के आई है उत्थे बहुत कुछ सानू इन्हें
1: वैसे
2: खुशियां
1: इसे
2: दे।
1: लिए शायद एक बोली भी बनी ने, वेड़ा पुत्ता तेरा घर वंडना
2: हाँ,
1: धियां वंडना बाबल दुख तेरा,
2: दुख तेरा,
1: है
2: बिल्कुल
1: ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: सीधी गल तो यह है।
2: बिल्कुल
1: अच्छा, तुसी आखदे सीगे तुहाडे लाइफ दे उत्ते, तुहाडी जिंदगी दे उत्ते माता पिता का बहुत प्रभाव रहा, खास करके पिता जी का, जिहड़े कि बहुत ही अनुशासन प्रिय सन।
2: हाँ जी, वो बहुत टाइम दे भी पाबंद, जो उन्होंने कह देना। मैं तुहानू एक छोटी जी गल दस सकदा भी जिस दिन मेरा विआह सीगा, ते शिवालिक व्यू होटल दे विच बरात जानी सी, उन्होंने कहा सी भी असीं 9 बजे पहुँच जाँगे, ते पिता जी ने कहा सी 9 बजे मतलब 9 बजे,
1: नौ
2: असीं उत्थे 9 बजे पहुँच गए, ते कुड़ी वाले हले पहुँचे नहीं सीगे। सब तो वड्डी जिहड़ी ये गल सी, इन्हां नूं भाजणा पै गया भी हाँ भी हुण फटाफट पहुँचो।
1: जी
2: बाकी पिता जी जिहड़े मेरे सीगे वो बहुत ज़्यादा गुणी ज्ञानी भी सीगे, काफ़ी पाठ पूजा वाले सीगे, जिथे वो इन्ने वड्डे अहुदे ते रहे, ते काफ़ी उच्ची विद्या दे नाल उन्हां को बड़ी हाईली क्वालिफिकेशन सीगी, ते उत्थे वो पाठ पूजा करन वाले बहुत सी। उन्हां दे जीवन की छोटी जी मैं तुहानूं गल दस सकदा, आखिर दे टाइम दे विच पिता जी दे नाल जो बताइयां उहदे विच साडे पिता जी दे नाल मेरे इहो जिहे यारां दोस्तां वांग गल्लां हुंदियां सी, ते मैं एक दिन कह दिता कि पिता जी तुसीं कितें परमात्मा नूं देखिया, रब नूं देखिया, गुरु नूं देखिया, ते थोड़ा सोची पैण लगे, ते कहण लगे भी तूं मूल मंत्र का पाठ कर। जदों मैं मूल मंत्र का पाठ किया ते उहदी व्याख्या भी उन्होंने सुनी, कहिंदे जदों तूं अरदास करें, अरदास करते वक्त तेरिया अखां भर आण, एक मन एक चित हो जाए, तां समझी उही गुरु दे दर्शन।

0: तो काफी ज्यादा बदला है,
1: काफी ज्यादा बदला है,
0: जो भी बदल गया
1: जी जी। तुहाडे घर बहू राणी आ गई,
2: बहू
1: राणी जी एक बेटी आ
2: गई है, बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: ओदे नाल समां किस तरीके बीतदा?
2: देखो जी, असी हसबेंड वाइफ नीचे ग्राउंड फ्लोर च असी रहने आ, ते ओ फर्स्ट फ्लोर च मतलब उहनां दा बेडरूम है,
1: पर
2: हां जी किचन सांझी है, पर ओह रहिंदे नीचे ही है टोटली। ओह राती सिर्फ सोन उपर जांदे है, हमारा उपर ओह कहिंदी साडा दिल नहीं लगदा उपर। ते बॉन्डिंग वड्डियां दा फर्ज बनदा है कि असी किस तरह अपने बच्चों नाल बॉन्डिंग बना के रखनी है। अगर असी नूं नहीं लियाए, अगर धी बना के रखिए, ठीक है बच्चों तो मिसटेक्स भी होंदी है, पर प्यार नाल समझाओ, ते बच्चे भी अजकल समझदार पढ़े लिखे है, वो समझ आते हैं।
1: बहुत अच्छी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महा

0: निदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

खबर दिती है कि यह समागम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्मवरा कंड के 2 साल सरकारी जश्न के हिस्से वजो कराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें जन्मवरेगंढ समारोह में शामिल होने कोलकाता पहुंचे। वह न्यू टाउन विखे ईको पार्क का दौरा करेंगे, जिथे वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट उची मूर्ति के नींह पत्थर रखने के समारोह में हिस्सा लेंगे। होशियारपुर केंद्रीय जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एक वार्डन को जेल में नशीले पदार्थों से मोबाइल फोनों की तस्करी में मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया से एक वीडियो संदेश में एक कैदी वालों लाए गए नशीले पदार्थों की तस्करी के इल्जामों की जांच तो बाद कार्रवाई की। कैदी ने जेल तो बाहर आने तो तुरंत बाद वीडियो जारी किया। इल्जाम लाया गया है कि डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट हरभजन सिंह ने उसनों जेल में नशीले पदार्थों की तस्करी करने लिए मजबूर किया सी अते सहयोग करने तो इनकार करने ते उसनों तंग परेशान किया गया अते तसीहे दिते गए। कल मीडिया को संबोधन करदिया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP संदीप मलिक ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट सामने आने तो बाद जेल विभाग ने 14 जून को शिकायत दर्ज करवाई सी। मुढ़ली जांच दौरान जेल विचों एक मोबाइल फोन बरामद होया सी, जिस तों बाद शहर के पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई। मामले की जांच लिए एक विशेष जांच टीम भी बनाई गई है। साढ़े होशियारपुर वाले पत्रकार ने खबर दी है कि जांच में हुण तक 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भी कहा है कि उन्होंने मोबाइल फोन बरामद किए ने अते कई लाख रुपए के लैण देण के सबूत इकट्ठे किए ने, जो कि जेल के अंदर काम कर रहे एक संगठित नैटवर्क वल इशारा करते ने। पंजाब के आज़ादी घुलाटियां रक्षा सेवावां भलाई ते बागबानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत का कहना है कि पंजाब सरकार आज़ादी घुलाटियां ते उन्हां दे परिवारां दी भलाई ते सन्मान नूं यकीनी बनाउण लई हर संभव उपराला कर रही है। मंत्री ने कहा कि आज़ादी घुलाटियां ने देश की आज़ादी लई अदुत्ती कुरबानियां दित्तियां ने अते उन्हां दा योगदान सदा सत्कार अते सन्मान दा हकदार रहेगा। उन्हां दस्सिया कि सूबा सरकार वल्लों सुतंत्रता संग्रामियां, उन्हां दीआं विधवावां, अणव्याहियां ते बेरोज़गार धीआं ते बेरोज़गार पुत्रां नूं 11,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दित्ती जा रही है, तां जो उन्हां दा सन्मानयोग जीवन यकीनी बनाया जा सके। उन्हां इह वी कहा कि सरकार समाज ते हर वर्ग की भलाई लई लोक पक्षी नीतियां लागू कर रही है ते आज़ादी घुलाटियां दे परिवारां नूं हर संभव सहायता प्रदान करन लई वचनबद्ध है। सूबे में चल रही फैसलाकुन मुहिम गैंगस्टर त्यौहार के 166वें दिन कल पंजाब पुलिस ने सूबे भर में गैंगस्टर के साथियों के पछाने गए ते मैप किए 704 टिकाणियां ते छापेमारी की। 166वें दिन पुलिस टीमों ने 405 व्यक्तियों को 2 हथियार समेत गिरफ्तार किया, जिस नाल मुहिम की शुरुआत तो हुण तक कुल गिरफ्तारियों की गिनती 44,102 हो गई है। इस तों इलावा 254 व्यक्तियों विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई दौरान 11 भगौड़े अपराधियों भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946 93946 राही गुप्त रूप में लोड़ीदे अपराधियों के गैंगस्टर बारे जानकारी दे सकते हैं, अपराध के अपराधिक गतिविधियों बारे सू भी दे सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लो 93946 93946। इस नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुई। साडा एक्सहैंडल @AIRRN जलंधर। राष्ट्रीय खबरां का अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे दोपहर बाद 1:40। नमस्कार।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फौजी वीरो, पेश है तुहाडी खिदमत दे विच जान तेरे नाम फिल्म चो लिया गया गीत कुमार सानू ते आशा भोसले दी आवाज़ दे विच।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल डाउनलोड।
1: फौजी वीरो प्रोग्राम हाले जा रही है, 1:40 हो रहे ने। हुण सुनदे हां पंजाबी विच खबरां ते इस तो कुछ पला बाद तुसी 1:50 ते सुनोगे उर्दू समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन दौरे लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता राही लखां लोगों के जीवन में खुशहाली लियाने लिए सहकारिता मंत्रालय की शलाघा की है। ब्रिक्स दियां नशा विरोधी एजेंसियां ते मुखियां दी मीटिंग अज गुवाहाटी विच शुरू हो गई है। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ तो वध सेहत कार्डां नूं 93 करोड़ तो वध आयुष्मान भारत हैल्थ अकाउंट साहबां नाल जोड़िया गया है। तो फीफा फुटबॉल विश्व कप विच इंग्लैंड मैक्सीको नूं 3-2 नाल हरा के क्वार्टर फाइनल च पहुँच गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड के 6 दिन दौरे लिए रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि वह राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के सद्दे ते इंडोनेशिया का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा दोहां देशों विचकार व्यापक रणनीतिक भाईवाली होर मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति साल 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह लिए मुख्य मेहमान वजों भारत आए सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया विच वह राष्ट्रपति सुबियांतो नाल प्रंबनन मंदिर जाएंगे तो प्रवासी भारतीयों नाल भी गलबात करेंगे। इंडोनेशिया तो प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। उनका दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भाईवाली होर मजबूत करेगा। दोवें धिरां रक्षा ते सुरक्षा, व्यापार ते निवेश, सिक्ख्या गतिशीलता, उभरदियां तकनोलॉजियां, खेडां ते जन संपर्क बारे चर्चा करनगियां। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया विच प्रवासी भारतीयों नाल भी मुलाकात करनगे। इस तों बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के सदे ते ऑकलैंड जाएंगे। यह दौरा दुआले संबंधों नूं एक नवा हुलारा देगा। प्रधानमंत्री लक्सन ने पिछले साल मार्च में भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वी ते दक्षिणी हिंद महासागर

ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा है कि इससे आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई नुक्ता नजर के साथ साथ मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी, महासागर नजरिए, नीज आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ता नजर को मजीद तकवीत मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर

0: वज़ीर-ए-आज़म वहाँ भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर ये दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेज़ी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तसादी, तजारती और कारोबारी रबतों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए भारत से बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के ज़रिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज़्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 3 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकत की निज़ाम बनाने की समत काबिल तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की तज़ीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ़ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने ये ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आइन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर, मुमताज माहिर तालीम, बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नज़रिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के एक पुरज़्म मैमार थे जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 93 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों आभा से 104 करोड़ से ज़्यादा सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मरबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिंसों पर मबनी एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है जो लोगों को एक वसीतर सेहत निज़ाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों और दीगर खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसत देना है ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमात का अहाता किया जा सके। इंतखाबी कमीशन ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में असेंबली की 3 सीटों के ज़िमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये ज़िमनी इंतखाबात बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके के लिए कराए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरब बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए ज़िमनी चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के अरकान सुखविंदर शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश छी बराइक के मुस्ताफी होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सारिफिन के तहफ़ुज़ाती कानून और पॉलिसी पर माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि इजलास में रुकन ममालिक, बैन अवी तनजीमें, सारिफिन, तहफ़ुज़ाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारिफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का कहना है कि बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर ताउन मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफार्म है। सारिफिन उमूर के महकमे के सेक्रेटरी निधि खेरे इस इजलास की सदरनशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगे। सारिफिन के तहफ़ुज़ की अहम आलमी तरजीहात के सिलसिले में मुल्कों के माबैन तबादला ख्याल की रहनुमाई करेंगी। दिल्ली से

0: नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: इम्तिहानात के निकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के इम्तिहान की फीस के रिफंड के लिए बैंक खाते की तफसीलात को अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के आइंदा 3 रोज के दौरान आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। यूक्रेन में आज सुबह राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 दीगर जख्मी हो गए। तुर्की में नेटो की अहम सरबराह मीटिंग से एक दिन कबल यह हमला किया गया है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शिरकत करने का इम्कान था। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि रूस ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मैक्सिको सिटी में इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मेक्सिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विंबलडन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रूस के खिलाड़ी को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं खवातीन के सिंगल्स में कैरोलिना मुंकोवा प्री क्वार्टर फाइनल में चेक जमहूरिया की अपनी साथी खिलाड़ी और साबिक चैंपियन बारबोरा को हराकर तीसरी मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका भी पहली मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहरुलकाहिल खत्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है और इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗੀਤ।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੋਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय

0: संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक परमबनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का

0: ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन

0: पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी, मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
1: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
2: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
3: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी

0: दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में दो दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਤਿੰਨ ਸੌ ਤਰਤਾਲੀ ਅਸ਼ਾਰਿਆ 6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2:30 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ। ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਕਰੀ ਦੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ।

प्रोग्राम चल रहा जी लंगरी प्रोग्राम चल रहा जी रंगली धरती तुम सुन रहे हो बलदेव सिंह सीकरी के गाए हुए कुछ लोक गीत हूँ पेश है उन्हों का गाया हुआ सोनी महिवाल।

जी बिल्कुल, हर कोई जो है दिल का राजा हुंदा है ना, ते कई दिल दी राणियां भी हुंदियां ने। ते पर कहिंदे ने कि सब तो पहला अपने आप नू जो है तुसी प्यार करदे हो ना, तां तुसी दूजियां नू भी प्यार कर सकते हो। सो सब तो पहला अपने आप नू प्यार करना शुरू करो, ते देखो जिंदगी बहुत ही प्यारी जी लगती है, ते एक वारों मिलती है। ये तो सारियां नू पता है कि हस खेड के जियोगे ना तो सामने वाला भी तुहानू खिड़े मत्थे मिलेगा। हाजीपुर तो लिख रहे ने केहर सिंह, चीतू राम, मोहन सिंह, गुरमेल ते मामी गमित, जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह, एंजल, पप्पी ते सोनू ते सारे साथी, रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा ते सोमनाथ कालिया, कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, हारदिक, निहारिका ते वंश बत्ता कोई भी गीत सुनने नू कह रहे ने। ते सुनांदे आ जी रूपाली ते डॉक्टर रिकस दी आवाज़ विच गीत है। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम केड़ा, अपना प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। yeah.

ते जग्गी दुआ। श्रीगंगानगर तो बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन दिनेश ते नरेश कुमार, ते इन्हां सारें दी फरमाइश ते आपां सुन रहे जी ए वाला गीत काका दी आवाज़ विच, ते तुसीं सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

वाजिवा गिप्पी गरेवाल ते मन्नत नूर दी आवाज़ विच पैर जगीत सुनिया ते गल कीती है जी पहला चादरां तहमत दी ते हुण गल करदे हां कुर्ते दी। जो बिल्कुल चादरे दे नाल टीला टाला कुर्ता पाया जांदा है। पुराने समय विच पंजाबी मर्द गोड्यां तक लम्मा कुर्ता पहनदे सी ते जो है सूती कपड़े दा बनिया हुंदा सी ते इस नूं पाउणा जो है बहुत सौखा ते इह जो है गर्मी विच बहुत ठंडक दिंदा सी। ते जे मैं इतिहास ते सभ्याचार दी गल करां ते विवाह ते त्यौहारां विच जो है विसाखी दे मेलियां सिख विआहां गुरपुरब अते पंगड़ा पाउण समें इह पहरावा विशेष तौर ते पहनिया जांदा है ते सौखा डिज़ाइन जी बिल्कुल इस विच तुसीं गर्मियां विच ढीले कपड़े जो है पसीना सोख लैंदे ने ते हवा आसानी नाल लंघ जांदी है। सो डिज़ाइन जो है सौखा पाया जाता है, ज़्यादा जो है औखा जो डिज़ाइन पा के नहीं जो है पाया जाता। सो सूती कपड़े दे नाल जो है इस नूं बनाया जाता है ते हर दिन त्यौहार विच बहुत ही मज़े दे नाल जो है ये पाया जाता है। ते लो जी हुण चिट्ठियां दी जे मैं गल करां, चिट्ठियां बहुत सारियां आ रही ने। जमशेदपुर तो लिख रहे ने हंजिंदर एंजल ते सारा परिवार ते सानू लिख रहे ने फिलौर तो गुंजन बबीता ते हर्ष फतेहगढ़ तो रामनाथ ततापुरी ते सुखमनजीत ते नाल सहजप्रीत कौर ते लिख रहे ने फाजिलका तो कुलवंत गिल ते मैंडी ते बेबी पिंड फाजिलका तो साढ़े कोल बहुत सारे जो है खत आउंदे ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ताज मुहम्मद अंसारी गुलाम साबिराहें ते मेराज जहां महादेव घाट अमलेश्वर तो डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज सुजला ज्योति ते रियांश ते कई इस तरह के दोस्त आते ने 10-10 चिट्ठियां पा के भेजते हैं। शायद मैं हमेशा ही कहती हाँ कि उन्होंने साढ़े उत्ते विश्वास नहीं है ता ही वो जो है हमेशा 10-10 चिट्ठियां सानू भेज देंगे ने। तो बई सारिया की चिट्ठी पढ़ी जाती है, भाई इन्नी सारी चिट्ठियां होंदिया भी नहीं, असी जो है लभ लभ के थोड़ी चिट्ठियां पढ़ रहे होंगे कि कई रब्बा कोई इस तरह की चिट्ठी आ जाए जो रिपीट ना हो। हुण लिख रहे ने सादुल शहर तो प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान ते इन्हां सारिआं दी फरमाइश ते आपां सुना रहे जी सुरिंदर कौर दी आवाज़ विच प्यारा जिहा गीत है सुणदे हां। ते इह गीत लोक गीत है ते बहुत ही प्यारा जिहा गीत है सुणदे हां। तुसीं सुण रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

माफ करना सुरेंद्र कौर की आवाज़ में लट्ठे की चादर आप नहीं सुना पाए, किसी तकनीकी कारण करके जो है गीत इदा ही रुक गया, पर अमर नूरी की आवाज़ में सुन दें जी इस गीत नूं।

सुन रहे जी प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां डी टी एस जी पंजाबी प्रसारण सेवा ते पटेल नगर मलौट तो लिख रहे ने डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता रानी गगनदीप ते बेबी आरजू पिंड नथाणा पिंड जिला बठिंडा तो लिख रहे ने हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता ते गीता कोई भी गीत सुनना चाहते ने रायण तो लिख रहे ने डॉक्टर बनवारी जयपाल बिमला सोनू ममता मोक्ष दीक्षा सुशांत ते विक्रम जयपाल राजपुरा तो लिख रहे ने हरदीप सिंह जगवीर ज्वाला डॉक्टर धर्मवीर ते जगसीर जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो लिख रहे ने बलवंत कुमार राजूबाई माया वर्मा शोभा वर्मा राहुल ज्योति अतुल पायल प्रियांश ते ऋषि वर्मा ते सुनना चाहते ने हर्षदीप कौर की आवाज़ में कोई भी गीत लो जी सुना रहे हैं हर्षदीप की आवाज़ में एक गीत है तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ थे। डीआरएम 864 किलो हर्ट्ज़ थे। एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़ थे। एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ थे। तो एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ थे आकाशवाणी अमृतसर। डीटीएच की आकाशवाणी पंजाब सेवा का यह जलंधर केंद्र है। तुम साढ़े प्रोग्राम वेब्स ऐप राही भी सुन सकते हो। शाम के 4 बज रहे ने। साड़ी दूजी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा के शुरू विच लो सुनदे हाँ मुख समाचार।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं।
1: सुनते हाँ हुण पत्थर की सनम फिल्म दे विचों मुकेश दा गाया ये गीत।

को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, ता मेल कियो मेरा राजन। ए फरमान सबना नू अपना मित्र समझण दी महान प्रेरणा है, पर सच्चे मित्र दी पछाण होनी अत्यंत लाजमी है। सच्चा मित्र केवल अकाल पुरख परमात्मा है, तांते फिर जीवां दा स्नेह उस अकाल पुरख संग होना चाहिदा है। उही सज्जन है, उही मीत है, उस दे घर विच ही सब कुछ है। की है जो उस पासों प्राप्त नहीं हुंदा, बस उस दी किरपा दे पात्र बनन दी लोड़ है। राग कानड़ा विच उचारे गए शब्द विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, जन को प्रभ संगे असनेह, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरा सब केह। सरवण करदे आं भाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जथे वलों गायन कीता होया ये शब्द।

0: जन को प्रभ संगे अस्नेह, साजनो तू मीत मेरा, गृह तेरा सब के है। इस शब्द गायन की तासी पाई हरजिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। दरअसल सच्चा मित्र वो है जिस दे नाल मेल स्थापित कीत्या चंगी मत प्राप्त होवे, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जावे ते अज्ञानता पलायन कर जावे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी विच ऐसे अनेक फरमान हन जिन्हां दिसंदड़िया दुरमत वन्या मित्र असाडड़े सेई। सुनदे हां तेजिंदर सिंह होरां पासों ए वार्ता।
1: गुरबाणी अनुसार साडे असल मित्र उही मनुख हन जिन्हां दा दीदार होया भैड़ी मत दूर हो जाती है, पर अजिहे मित्र सारा जगत भाल वेखण उपरंत भी विरले ही मिलते हैं। गुरु अर्जन देव जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 520 ते पवित्र फुरमान है, जिन्हां दिसंदड़िया दुरमत वंजै मित्र असाडड़े सही, हौं टुंडेंदी जग सबाया

मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुदबिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दा रहना। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई वरिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। जिहड़े प्राणियां दा मित्र धनवान सर्व कला समर्थ अकाल पुरख है, उन्हां नूं किस बात की कमी आ सकती है। ऐसा साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी राग गौड़ी च उचारे गए शब्द विच फरमाउंदे हन। जाका मीत साजन है समिया, तिस जन कौ कौ काकी कमिया। इस शब्द का गायन किया है भाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे।

जाका मीत साजन है समिया, तिस जन कौ कह का की कमिया। इस शब्द गायन कीता सी पाई ओंकार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: ਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।
1: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह

0: 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो हुण सुनो साडे अज दे बाकी नंदे प्रोग्रामां दा वेरवा। शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम विच बरसातां च पाणी दी संभाल किद्दां कीती जाए इहदे बारे डॉक्टर इहदे बारे उपेंद्र कुमार होणा नाल कीती गल्लबात सुनाई जाएगी। इस तों इलावा तिलां दी काश्त बारे डॉक्टर अमित कौर होणी दसणगे। गीत संगीत होएगा कल दे प्रोग्राम। काम दीआं गल्लां ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा। शाम 7:40 ते जसप्रीत कौर फलक होना दा काव्य पाठ सुनोगे प्रोग्राम विविधा तहत। रात 9:45 बजे साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9 ते 9:15 बजे सुनोगे स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे सुनोगे पंजाबी नाटक फर्श विच उगे रुख। भाग लैण वाले कलाकार होणगे वीना तीर, बी एन शर्मा ते निशिकांत साहिर। रात 10:02 ते सुनोगे हिंदी काव्य गोष्ठी। भाग लैण वाले कवि होणगे प्रेम विज, सागर सूद संजय, वीरेंद्र अदब ते सिमर सिदोश। रात 10:30 बजे चंद गजलां समात फरमाओगे। हिंदी पंजाबी ते अंग्रेजी खबरां आपो अपने समय मुताबक नशर कीती जाणगियां। ए सी साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्रामां दा वेरवा। आहुन सुणदे इक समूह गान।

0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तों वख-वख प्रोग्रामां लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गैटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। बधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा।
0: हाँ जी।
1: हुणे पुलिस थाने आओ। रुको, नहीं तां कारा जावांगे। हाँ
0: क्यों? पर मैं
1: कल्ले दूजे कमरे विच जाऊं। तुहाडा बेटा साडी हिरासत विच है अते तुसी डिजिटल अरेस्ट विच हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दियो, बच जाओगे।
0: इन्ने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजा है, उन्हें प्रोसेसिंग लिए 30,000 दियो, नहीं तो बेटा जेल जावेगा।
0: जेल ता तू जावेगा, तेरा चेहरा रिकॉर्ड हो गया है।
1: ओए,
0: डिजिटल अरेस्ट जेहा कुछ नहीं हुंदा, ये सब फ्रॉड है, इसलिए घबराओ ना। पुलिस, बैंक, RBI आदि दे नाम तो आन वाले साइबर अपराधियां दे फोन कॉल जा वीडियो कॉल तो सावधान रहो। उन्हां नू पैसा ना भेजो अते तुरंत पुलिस नू रिपोर्ट करो।
2: हेलो मम्मा।
0: हाय।
3: RBI कहिंदा है
0: जानकार बनो, सुचेत रहो।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हो गया इंतजाम। किसदा गुड्डी दी फीस दा दिखा। 20,000 दा लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज किन्ना है? लोन सिर्फ नियंत्रित संस्थावां तो ही लो। लोन दा विचार लोड अनुसार, वो भी चेक करके। हो गया इंतजाम। तनखा एडवांस च भेजिए।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
5: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी लहर सुधारां, डिजिटाइजेशन आते पेशेवर प्रबंधन राही पसार दे एक नवे पड़ाव विच दाखल हो रही है। देश अज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म वरीगंढ ते उन्हां नूं नमन कर रहा है। पंजाब ते चंडीगढ़ विच भी इस संबंधी प्रोग्राम आयोजित। 17वें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबलिया 2024-25 विच पंजाब के 2 ते हरियाणा के 1 विद्यक अदारे नूं जेतू ऐलानिया गया है। पंजाब सरकार वालों ऑनलाइन NRI मिलनी 8 जुलाई नूं ते भारत की मर्दा की अंडर 18 हॉकी टीम लई 11 दिनों का राष्ट्रीय कोचिंग कैंप चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में आज तो 17 जुलाई तक। हुण खबरां विस्तार नाल। गृह ते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी लहर सुधारां, डिजिटाइजेशन आते पेशेवर प्रबंधन राही पसार दे एक नवे पड़ाव विच दाखल हो रही है। सहकारिता मंत्रालय दे 5वें स्थापना दिवस समारोह नूं संबोधन करते हुए श्री शाह ने कहा कि हरेक खेतर विच सब तो वधिया कारगुजारी दिखाउण वालियां 5 सहकारी सभावां नूं मानता देने लिए एक रैंकिंग फ्रेमवर्क का ऐलान किया गया है। गृहमंत्री ने कहा कि राजा वालों अपनाए गए मॉडल उपनियमों राही अपनी गतिविधियों के दायरे का पसार करके मुढ़लिया खेतीबाड़ी कर्जा सभावां नूं मजबूत करने के यतन भी किए जा रहे हैं। उन्हां किसानां नूं जैविक खेतीबाड़ी उत्पादों का उत्पादन वधाउण अते रसायनिक खादा ते कीटनाशकों की वरतों घटाउण की अपील भी की। श्री शाह ने पिछले 5 सालों के सहयोग राही खुशहाली के मंत्र की पालना करके लखां लोगों के जीवन में बदलाव लियाउण लई सहकारिता मंत्रालय की शलाघा की।
6: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
5: गृहमंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि बीज उत्पादन के खेत्र विच स्थापित राष्ट्रीय सहकारी कमेटी आने वाले 3 सालों विच भारत के सब तो वड्डे गैर सरकारी बीज उत्पादन संगठन वजों उभरेगी। उन्हां अगे कहा कि इस राही 3 उद्देशों ते काम किया जा रहा है, जिस विच किसानां नूं शुद्ध अते मिलावट मुक्त बीज प्रदान करना, वध उत्पादन देण वालियां वधिया बीज किस्मां दा विकास अते वंड अते भारतीय रवायती बीजां दी संभाल शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नूं उन्हां दी 125वीं जन्म वरीगंढ ते याद करदे होए श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन भारतीयता, भारत माता प्रति समर्पित कर दिता।
6: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
5: देश आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म वरीगंढ ते उन्हां नूं नमन कर रहा है। भाजपा के चंडीगढ़ दफ्तर विखे पंजाब भाजपा के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी

0: नौकरी लग गई।
1: ओए वाह, बधाइयां। हुण बहुत सारी शॉपिंग।
0: हाँ, नवा मोबाइल, जीन्स, जैकेट।
1: खैर जा शहजादे, तनख्वाह तो पहला खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहला बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दी,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए। पर पार्टी देन तो नहीं बचेगा तू।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तो हड़ा।
1: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। शाम दे 6:30 बज चुके ने। लोहन सुनो देहाती प्रोग्राम।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
1: ਹੈਲੋ,
2: ਯਹ ਆਇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसीं साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राहीं भी सुन सकदे हो। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ।
5: ਨਮਸਕਾਰ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਕਾਰਤਾ ਪਹੁੰਚੇ।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। आहुन प्रोग्राम विविधा तहत हिंदी काव्य पाठ सुनदे आ। काव्य पाठ करनगे जसप्रीत कौर फलक।
1: मेरी कविता का शीर्षक है कैक्टस के फूल। बादलों के साए में आकाश की आगोश में, बादलों के साए में आकाश की आगोश में, मदमस्त हवाओं ने धरा की सितार पर जैसे ही छेड़ी सरगम, कायनात गूंज उठी मधुर संगीत से। कैक्टस बनी जिंदगी में फिर से खिलने लगे नरगिसी फूल, मिट्टी से उठने लगी सौंधी सी महक, खुशबू में डूबा रोम रोम एक आरती होने लगी, कवि मन से घर आंगन से उमंग भरे तन से, प्रेम भीगे नैनों से बूंदों भरे सावन से, दूर फलक से और क्षितिज के छोर से नजर आने लगे फिर तुम, स्वप्निल मन और बंद पलकों में एक बार फिर से धड़कने लगी जिंदगी, एक बार फिर से धड़कने लगी जिंदगी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा कर रहा है आम का पेड़, नीम और शहतूत का वृक्ष, बेरंग गमला खाली खाली पायदान, वीरान कमरा और कमरे में बोलती आवाजें, डायरी के अब पीले पड़ गए पन्ने, तरतीब से सजी हुई किताबें जो अभी भी पड़ी हैं पुरानी बुक शेल्फ में, चढ़ी हुई है मिट्टी एल्बम में बीती हुई यादों की, पड़ी हैं मेरे नर्म एहसासों की निशानियां भी, सजी है मखमली कालीन हरी घास जैसी पगडंडी दर से दीवार तक, और प्रतीक्षा कर रहा है वो सूखा हुआ एहसासों से लबरेज गुलाब भी, और प्रतीक्षा कर रहा है वो सूखा हुआ एहसासों से लबरेज गुलाब भी, जो छुपाया था कभी दुनिया की नजरों से जिंदगी की किताब में, जो छुपाया था कभी दुनिया की नजरों से चुराकर जिंदगी की किताब में, आज उम्र के इस दौर में मालूम न था फिर तुझे देखने भर से जाग उठेगी वो डायरी वो धूल भरी किताबें, फिर से तुझे देखने भर से जाग उठेगी वो डायरी वो धूल भरी किताबें, फिर से महक उठेगा वो सूखा हुआ गुलाब, चहक उठेंगी वो हसरतें, झूम उठेंगे वृक्ष पौधे, खिल उठेगा उन पर फिर वही यौवन। हाँ कई वर्ष लग जाते हैं मोहब्बत को समझने में, हाँ कई वर्ष लग जाते हैं मोहब्बत को समझने में। कविता का शीर्षक है निशानियाँ। कागज़ के चंद टुकड़े मैंने संभाल लिए, कागज़ के चंद टुकड़े मैंने संभाल लिए, चंद अल्फाज जो पसंद आए दिल में संजो लिए, कुछ शब्द जो लिखे मगर

0: भेजे ना गए, लिबास बदलते कुछ खूबसूरत पैगाम, कुछ अस यादों के धुंधले साए लिए, सौगात समझकर संभाल लिए, चंद बोल जो बोले ना गए अनसुने रहे, चंद बोल जो बोले ना गए अनसुने रहे, कुछ कही अनकही बातें, कवर पर तेरा नाम लिखी किताबें, कुछ मीठी सदाएं, खतों की कुछ सतरें जो अभी भी सजी हैं मन की सलेट पर, पलाश टेसू समझकर संभाल लिए, कुछ सुलगते ख्वाब तुम्हारे नैनों की चमक, कुछ शिकवे शिकायतें जो मैंने ना किए, कुछ रंग बदलती तस्वीरें हाथों में लिए, इंतजार के दिए नजराने समझकर संभाल लिए, जिंदगी की चंद परतें जो कभी उठाई ना गईं, जिंदगी के कुछ अंक जिन्हें खोला ना गया, जिंदगी के कुछ साल कुछ इंद्रधनुषी सपने शबनमी एहसास समझकर संभाल लिए, वो अब तलक महफूज हैं मेरी चुनरी की गांठ में, वो सब अब तलक महफूज हैं मेरी चुनरी की गांठ में। कविता का शीर्षक है शून्य से आगे। मुझे कभी भी रंज ना होगा, मुझे कभी भी रंज ना होगा, करती रहूं ताउम्र तेरा इंतजार, उन बेथलहम की कलियों की तरह जो बेकरार रहती हैं खिलने के लिए। हाँ, पूर्णमासी की रात को खिलती तो हैं ज़रूर, मगर फना होने के लिए। ठीक उसी तरह एक बार मैं भी तुझमें समाकर फैल जाना चाहती हूँ महक की तरह, और फिर तेरी बाहों में सिमट जाना चाहती हूँ शून्य से भी आगे, और फिर तेरी बाहों में सिमट जाना चाहती हूँ शून्य से भी आगे। कविता का शीर्षक है ख्वाब। मेरे ख्वाब का रंग नहीं था मौसमी रंगों जैसा, मेरे ख्वाब का रंग नहीं था मौसमी रंगों जैसा, ना वो पत्ता जो पड़ जाए पीला, ना ऐसा फूल जिसकी पंखुड़ियाँ आंधी से बिखर जाएं, मेरे ख्वाब के बीज तो मिट्टी में मिल गए, मौसम बदलते ही उनके अंकुर फूट पड़े और फूल बनकर खिल पड़े हैं। अपने ख्वाबों को मैंने नींद से नहीं रक्त से सींचा है, अपने ख्वाबों को मैंने नींद से नहीं रक्त से सींचा है।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਲਕ ਦਾ ਕਾਵਿ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼, ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਹੌਨ ਚੰਦਨ ਦਾਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ।

आकाशवाणी निरंतर पेशा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। और दोस्तों, जिंदगी वाकई बहुत हसीन है, बहुत खुशनुमा है, बशर्ते असी उन जीण दे तरीके नूं वधिया तरीके नूं अपना लईए। सानू अपने अंदर दी ताकत नूं पछाणना बहुत जरूरी है। ताकत पछाणिए और वड्डी सोच रखिए। वड्डी सोच रखांगे तां ही असी अगे वध पावांगे। अंदरली ताकत नूं भुल के छोटे दायरे विच ना रह जाइए। दूसरे एक बार दी गल है कि एक जंगल विच एक बाज दा अंडा किसे तरह जंगली मुर्गी दे आलणे विच आ डिग्गिया। कुछ दिनों बाद उस अंडे विचों बाज दा बच्चा जदों निकलिया, वह मुर्गी दे बाकी बच्चे नाल भी वड्डा होण लग पिया, उन्हां नाल रहण लग पिया। वह उही कुछ करदा जो बाकी मुर्गे करदे सन, जमीन खुरच के दाणे चुगणा, कुड़कुड़ करदे रहना, डर के थोड़ी जिही उड़ान भरना, फिर वापस आ जाना। वह पूरी तरह मान चुका सीगा कि वह एक बाज का बच्चा नहीं बल्कि एक मुर्गी का ही बच्चा है। एक दिन अचानक उसने आसमान दे विच एक बहुत ही शानदार पंछी उड़ते देखा जो बिना खंभ हिलाए हवावां नूं चीरदा होया उचाइयां ते उड़दा जा रहा सी, उड़दा जा रहा सी, अगे वधदा जा रहा सी। बाज दे बच्चे ने हैरान होकर पुछया कि वह कौन है। मुर्गी ने जवाब दिता, वह पंछियों का राजा बाज है। वह बहुत उच्चा उड़दा, उचाइयां भरदा रहिंदा है, पर तू उस वर्गा नहीं बन सकता क्योंकि तू तो एक मुर्गा है ना। बाज दे बच्चे ने उस गल नूं सच मान लिया ते उसने कदी उच्चा उड़न की कोशिश नहीं की। एक दिन वो मुर्गे की जिंदगी जींदा होया ही मर गया। इस करके दोस्तों, असीं भी कई बार अपने आले दुआले दे लोकां दीआं नकारात्मक गल्लां सुन के अपने आप नूं छोटा समझ लैंदे आ, पर साडे अंदर बाज वर्गी उड़ान भरन की ताकत हुंदी है जिहनूं पछाणन की लोड़ हुंदी है। ते अपनी ताकत नूं पछाणो ते अपनी सोच उच्ची ते सकारात्मक रखो ते जिंदगी विच अगे वधदे जाओ। ते आओ दोस्तों, असीं प्रोग्राम नूं अगे वधाउंदे आ। ते प्रोग्राम दा पहला गीत फिल्म एक दूजे के लिए, तो इस गीत नूं गाया लता मंगेशकर ते अनूप जलोटा ने।

0: आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। प्रोग्राम ऐसे तारे जारी रखेंगे इस सुनेहे तो बाद।
1: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाने की गलता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगते।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, और जिंदगी नु हसीन और खूबसूरत बनाने वास्ते सानू पुराने गले शिकवे गुस्से जड़े है छड़ देने चाहिए है। हर एक नु माफ करना सीखो, नकारात्मक सोच नु भी उत्थे ही छड़ दो। पुरानियां जड़ी गल्लां है, कोई गुस्से गले शिकवे है साडे दिमाग ते जड़े बोझ पांदे, उन्होंने तो छड़ के हर एक नु माफ करदे होए अगे चलदे रहना चाहिए है, क्योंकि जिंदगी दा नाम ही है चलना। हाँ दोस्तों, तुहानू एक छोटी जी कहानी सुनाना है कि एक बार की गल है, एक नौजवान एक मानसिक गुरु कोल गया अते कहण लगा, क्योंकि काफ़ी दिमाग ते भार लैके चल रहा सीगा, कहिंदा कि मैं अपनी जिंदगी विच बहुत परेशान है, पुरानियां गलतियां लोकां दे दित्ते धोखे अते माड़ियां यादां मेरा खेड़ा नहीं छड़ रही। गुरु जी ने मुस्कुरा के उहदे हथ विच एक गंदे पानी का गिलास फड़ा दिता अते कहा कि इस नूं सीधा फड़ के खड़े रहो। नौजवान खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद गुरु जी ने पूछा, कोई तकलीफ? नौजवान ने कहा, नहीं गुरु जी कोई तकलीफ नहीं। 1.5 घंटे बाद गुरु जी ने फिर पूछा, नौजवान ने कहा, हाँ हुण मेरा हाथ थोड़ा दुखन लग पिया है। गुरु जी ने कहा, फड़ी रखो गिलास नूं हजे। 2 घंटे बाद नौजवान का हाथ बुरी तरह कंबन लगा अते ओ दर्द नाल कराह उठिया। तां गुरु जी ने कहा, हुण इस गिलास नूं थले रख दिओ। गिलास हेठां रखदे ही नौजवान नूं बहुत सुकून मिलिया। गुरु जी ने समझाया कि यह गंदा पानी तुहाडी जिंदगी दियां नकारात्मक यादां अते गुस्सा सी। जिन्नी देर तुसी इनू फड़ी रखोगे, दर्द तुहाडा है वधदा ही रहेगा, घटेगा नहीं। ते इस करके एक गिलास यानी कि अपनी पुरानियां नकारात्मक सोच जिहड़ी है उन्हें छड़ के अगे वधना सीखो। क्यों दोस्तों, सही गल ना है कि बीते समय के बोझ नूं अज भी असीं अपने उपर हावी क्यों होण दईए? उस गंदे गिलास नूं यानी कि उस सोच नूं पिछे रखिए ते मुस्कुरांदे होए जिंदगी नूं जीना शुरू करिए ते अगे वधदे रहिए। तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम जिंदगी हसीन है, ते प्रोग्राम नूं अगे वधाउने ते अगला गीत तुहाडे लई फिल्म कभी कभी तों। इस गीत नूं गाया लता मंगेशकर ते किशोर कुमार ने।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181

0: 9989336। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है और प्रोग्राम विच अगला गीत कुर्बानी फिल्म तो इस गीत नु गाया है मनहर आनंद ने।

परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। और दोस्तों साड़ी आजकल दी जिंदगी जड़ी है बहुत तेज हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। सानू हर चीज़ दा जड़ा रिजल्ट है उससे वेले चाहिए, इंस्टेंट चाहिए है कि हर चीज़ दो मिनट दे विच मिल जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। पर मेहनत जड़ी है मेहनत करके हौली हौली फल मिलता है। जेकर मेहनत करने के बावजूद भी नतीजा नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें कहानी सुनावांगा जिहड़ा कि तुहाडे सुनने लई बहुत जरूरी है। दोस्तों जदों चीनी बांस यानी चाइनीज बैंबू जड़ा होंदा ना, उन्हें जदों बीजिया जाता है ना, तो उन्हें जमीन विच लगा के उहदे बीज नूं लगा के तो पहले पहले पांच साल बहुत औखे निकलते। पहले साल उसनूं पानी अते खाद दित्ती जांदी है पर जमीन विचों कुछ भी बाहर नहीं निकलता। दूजा साल लंघ जाता है, तीजा साल भी लंघ जाता है, चौथा साल भी आके चला जाता है। पर चार साल तक लगातार मेहनत करने के बावजूद जमीन ते हरियाली का एक भी तिनका नजर नहीं आता। बैंबू का कोई भी बूटा जो सानू जमीन तो बाहर कोई पत्ता निकलता नजर नहीं आता। उस तरह जे कोई आम इंसान होंदा तो हिम्मत हार के पानी देना ही बंद कर देता है। पर फिर आता है पंजवां साल और पंजवें साल विच सिर्फ 6 हफ्तों में यानी कि 45 दिनों के अंदर वह बांस का पौधा जड़ा है जमीन पाड़ के बाहर जो निकलता है तो 80 से 90 फुट की ऊंचाई तक

पहुंच जाता है। और सवाल यह है कि वह बांस सिर्फ 6 हफ्तों में वध्या? नहीं, वह उन्हां 5 सालों में भी वध रहा सी जदों वह जमीन के अंदर अपनियां जड़ां नूं मजबूत कर रहा सी ता जो 90 फुट उच्चा दरख्त का बोझ वह चल सके। ते दोस्तों, इस तरह जेकर असी भी जिंदगी विच मेहनत कर रहे हैं पर नतीजे नहीं आ रहे तो निराश होने की कोई लोड़ नहीं, तुसी असफल नहीं हो बल्कि बांस दे पौधे वांग अंदरों मजबूत हो रहे हो, अपनियां जड़ां पक्कियां कर रहे हो। जदों तुहाडा वक्त आएगा तो तुहाडी सफलता की उड़ान सब नूं हैरान कर देवेगी। इस करके हमेशा सबर रखो ते मेहनत करते रहो और मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और प्रोग्राम विच इस वेले वक्त हो गया एक गीत दा, और एक गीत है जी कुमार सानू ते अलका याकनिक दी आवाज च, फिल्म दा नाम साजन चले ससुराल।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1। ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 PM देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।
2: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है और प्रोग्राम दी अगली पेशकश एक गीत शान फिल्म तो जिसनु गाया है आशा भोसले ने।

आशा भोसले दे गाए शान फिल्म दिस गीत दे नाल ही अज दा प्रोग्राम जिंदगी हसीना इत्थे खत्म करन दी दिओ इजाजत। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी रात 9:45 सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो समाचार संध्या, रात 9 सुनोगे न्यूज़ @9 ते रात 9:15 सुनोगे स्पॉट लाइट साडे दिल्ली केंद्र तों।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक

0: दायरे तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में दो वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में

0: वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
2: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
3: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की

0: यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के छठे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and

0: पागलैंड मले कलाकार ने वीना तीर बीएन शर्मा ते निशिकांत साहिर।
1: फर्श विच उग्या रुख ए है अज दा नाटक, लेखक श्री आत्मजीत, निर्देशक विनोद धीर, सहायक हेमराज शर्मा, तिलोपेश नाटक फर्श विच उग्या रुख।

0: चाचा चाचा आ जाओ, वक्त हो गया।
1: चाचा भी साढ़े कमाल ने, शाम के 5 बज गए ने, दुध लैण का समा हो गया। बस किसी गल के खेड़े ना पै जा, हुण घर के शीशियां की शामत आई हुई है।
0: चाचा चाचा
2: मैं आ गया, तू देख ती जा, हुण मैं खाना खाने वाले मेज के खेड़े पै जाना। ऐसी शामत आई समझ।
1: ओ सॉरी, तुसी सब कुछ सुन ले।
2: ते तू केड़ा गलत आख्या है, आ दोवें बोतलां फड़ा मैनू, मैं दुध ले आवां।

0: Anya?
1: आ गए। एक फूल बड़ा सोना है, कितों ले अंदर?
2: सिटी गार्डन चो।
1: अच्छा अंदर तो आओ।
2: ठहर भी ना, मैं इस फूल नु एडी दूरों लेके आया, तेरे चूड़े विच तला लवा।
1: तुसी बस
2: देख तेरे चूड़े विच किन्ना सोना लग रहा है।
1: अच्छा चलो हम डाइनिंग टेबल पे चाह तैयार है।
2: ते मेरा दूध
1: मिल जाता है। बैठ तो जाओ।
2: माय डियर इकलौती पत्नी, मेनू घर वड़दे ही दूध मिल जाना चाहिए।
1: तुहाडे वास्ते सगो निप्पल वाली बोतल ही ना ले आया।
3: बोतला दो ले आया है। हाँ बोतला दो ले आया है, बस एक मिनट गया ते चा बना के ले आया।
2: चाचा वीना नू दे दो, कर लवेगी गरम। एक काम हुन तुहाडा नहीं रहा।
3: मैनू पता है केड़ा काम मेरा है।
2: ही इज रियली ग्रेट।
1: काश आज इन्हां दा अपना बेटा जीवंदा होंदा।
2: सुहिरदा ते लगन दी लाजवाब मिसाल ने, सारी उम्र पापा दी मतहती कीती। उन्हां दे दफ्तर विच चपड़ासी सन, पापा भी इन्हां नूं सका भरा समझते सन। कोई मंदा नहीं कि पापा ते चाचा दलील सिंह इक्को मेज ते कट्ठे खाना खांदे सन। कई अफसर पापा नूं आके कहंदे कि हांडा साहब
3: बारे मेथों वध कोई नहीं जानदा। मैं तां दफ्तर दे सारे अफसरां दे पोतड़ियां दा वाकफ हाँ। किसे भी अफसर दी कोई गल पुछनी हुंदी तां लोक मेरे कोल आंदे सन।
2: चाचा जरा दुध फड़ा दोगे, तुहाडा हाथ थक रहा होएगा।
3: हाँ पर अजे मिठा घोलना है। मैं अफसरां ते उन्हां दीआं तीवियां दे राज जानदा।
2: शुक्र है मेरी मां वेले सिर मर गई सी।
3: हुण तां माफ कर दिता, पर जे फेर हांडा साहब दी शान दे खिलाफ कोई गल कीती तां मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा।
2: चाचा तुसी शायद मैनूं दुध देण लगे सी।
3: देख तू अफसर होएगा अपने दफ्तर च, मेरे लिए तां तू निक्का जिहा कुमार है। मैनूं तां ओ कुमार भी याद है जिहड़ा टा टा टा टा कह के मेरे कंडाड़े चढ़ जांदा सी ते जिसनू अपना नक भी नहीं सी पुंजना आंदा। इस लई कहिंदा हुण तां माफ कर दित्ता।
2: पर चाचा ये कोई दलील ते ना होई?
3: दलील सिंह कदे बेदलीली गल नहीं करदा, ये हांडा साहब कहिंदे हुंदे सन ते हांडा साहब कदे नहीं गलत कहिंदे सन।
1: आलो चाचा तुहाडी चाह।
2: पर चाचा डैडी ये तो कदे नहीं सन कहंदे कि चाह जरूर खड़े होके पीनी है। तुसी बह जाओ।

0: श्रीमान जी, तुसी दूध पियो ते जरा कुछ सस्ताओ। मैं जाके अजय शीशे साफ करने ने। चाह पै के पीन दी कोई दलील है भला? चाह पियो ते नाल करो कम। हांडा साहब कहंदे हुंदे सन, बंदिया कम कर कम कर ते बस कम कर।
1: बिना वेखो तो कौन आया?
2: आओ आजो भाई साहब, सानी जी ने।
3: हेलो कुमार,
1: हेलो।
3: कुमार ये ने मिस्टर सेठी साढ़े कॉलेज विच पढ़ाते ने।
1: हेलो,
4: नमस्ते जी,
1: ग्लैड टू सी यू, वेलकम।
3: ये तुहाडी कोठी का नक्शा देखने आए ने।
4: कुमार साहब, मैंने सानी ने दसिया सी कि बड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन है तुहाडी कोठी का।
1: शुक्रिया। तुसी कित्थे बना रहे हो?
4: जी हाले तक तो साढ़े कोल मसा प्लाट ही है, सोचा कोठी तो नहीं बना सकते, चलो नक्शा ही बना लीए।
2: इसका नक्शा भी साढ़े पिता जी ने बनवाया सी।
4: चलो असी नहीं तो साढ़े बच्चे मकान बनवा लेंगे।
1: नहीं नहीं ऐसी कड़ी गल है, तुसी खुद ही बनवाओगे।
3: कुमार मिडिल क्लास का तो बस गुजारा ही है, एक जनरेशन बना दी है तो दूजी उड़ा दें दी।
2: भाई साहब की गल ठीक है, असी भी ये मकान पिता जी की इंश्योरेंस ते इन्हों के लोन नाल बनवाया सी, हुण सारी उम्र किश्ता लांदे रहांगे।
1: अजे भी साड़ा लॉन खाली पिया।
4: हाँ तुहाडे कोल तां रुख लाउण दी भी वाहवा गुंजाइश है।
1: हाँ जी, पर रुखां तो पहला बाउंड्री वॉल भी चाहिए है ना, नहीं तो जानवर नहीं छड़दे ते आके गंद भी फजूल ही पाउंदे ने।
0: गंद हुण गंद कितने नजर नहीं आवेगा, पोर्च दे सारे शीशे चमक उठे ने। नमस्ते जी, मेरा नाम है दलील सिंह, हांडा साहब दे दफ्तर नौकरी करदा सा ते कुमार दा चाचा। चाह पियोगे?
3: नमस्ते जी। सेठी ये होने साढ़े चाचा दलील सिंह, ना ते कम दो विच दलील।
1: सेठी साहब, साढ़े चाचा जी लगन ते मेहनत की ज्यों की जागती मिसाल ने, जिस चीज़ के खेड़े पै जान उसनों तुर तक पहुँचा के छड़ते हैं। अजकल घर के शीशियां मगर पे हैं, ता ही तो वेखो।

0: बीना, स्वेटर बुन रही हैं? किस लिए बुन रही हैं?
1: तुहाडे लिए।
0: बीना, तू इन्ना मेरे नाल प्यार क्यों करती है? मैं इस काबिल तो नहीं। तेरे प्यार का हकदार तो कोई आदर्श मनुख होना चाहिए सी।
1: गल्ला तो कोई तुहाडे कोलों सीखे।
0: एक आदर्श इंसान, चाचा उस दिन आदर्श मनुख की परिभाषा दस रहा सी कि पूर्ण मनुख भरिया होया। बीना, तू कदे वेख्या है अजे मनुख?
1: तुसी तो सचमुच बहुत गंभीर हो गए हो।
0: नहीं, वैसे मैं सोच रहा चाचे ने ठीक किया सी। सानू संपूर्ण इंसान बनना चाहिदा है, एक आदर्श इंसान।
1: चाचा भी तो एक आदर्श इंसान है।
0: हाँ, वो तो है, पर बिना चाचा बीते हुए युग का मनुख जापता है। इस युग विच इन्नी जज्बाती अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं। उन जिस गल का मैनू दुख भी है कि एक किहो जिहा समा है कि असी अजिहे सच्चे सुचे हिरदे नूं भी आदर्श नहीं स्वीकार रहे। चाचा इमोशनल है, टू मच। तू दस, तू कोई वेख्या है भरिया होया मनुख?
1: हाँ, मेरे जहन में एक आदमी आता है।
0: कौन?
1: खैर, ये तो मैं नहीं दस सकती सी कि वो कौन है।
0: क्यों, ऐसी की गल है?
1: नहीं, कोई खास नहीं, पर दसिया भी नहीं जा सकता।
0: वो तेरा क्लास फेलो सी?
1: नहीं।
0: टीचर होएगा? फिर गुआंढ रहिंदा होना?
1: बिल्कुल नहीं।
0: फिर मिलिया कित्थे?
1: गड्डी विच।
0: की नाम है उसका?
1: पता नहीं,
0: कितों दा रहने वाला है?
1: रब जाने।
0: करदा की है?
1: मैं पूछा ही नहीं।
0: बिना एक की मजाक है, कौन है, कितों दा है, की ना है, कुछ पता नहीं। ते फिर भी तेनू वो एक भरपूर इंसान लगा है?
1: बस यही तो उसकी खूबसूरती से।
0: बिना, तू जरूर कुछ लुका रही है।
1: नहीं, मैं कुछ नहीं लुका रही।
0: फिर तू बुजारत क्यों पा रही है? साफ दस वो कौन है, वो तेरा की है?
1: हो, तुसी तो एवें नाराज हो रहे हो। चलो छड़ो परे, आपा की लेना उस विचों, किथे ये ना होए पे किसे नाम मालूम नु याद कर।

0: कुमार, उसकी शख्सियत विच स्वार्थ ना दी कोई शय नहीं सी।
1: तू उसका घर पता नहीं पूछा?
0: इन्ना तो उसने वेल ही नहीं दिता। सारा सफर उसी शख्सियत ने मली रखिया। उहदा संगीत गूंजता रहा।
1: उसने जान लगिया कुछ कहा सी?
0: क्या सी? उन्हें क्या सी? तू एक चंगी कुड़ी है, रब तेनू सुखी जीवन दे।
1: तेनू वो याद आता है?
0: हाँ, अक्सर, क्योंकि उसकी शुभ इच्छा किन्नी सच्ची सी। मैनु सचमुच सुखी जीवन मिले। वो आदर्श इंसान सी ते तू आदर्श पति।
1: तू तो मेरा साह ही कट दिता सी। पर वीना, तू पति तो इंसान विच भी फर्क पा देता है कि पति इंसान नहीं हुंदा। शुक्र है गड्डी ने अजमेर तक ही जाना सी। जे कि अगाह निकल जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाता।
2: बर्बाद हो गया, इतना सारा अन्न बर्बाद। तुसी ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? परौंठे ठंडे हो रहे हैं तो तुसी गरम। कोई दलील तो ना होई? आंडा साहब कहते होंगे सन, खाना वेले सिर, आना वेले सिर, जाना वेले सिर, नाना वेले सिर, तोड़ा वेले सिर, फिर मनुख पूरे डिस्प्लेन का मालक होता है।
1: वेरी सॉरी चाचा, वेरी सॉरी।
2: इस बार तो माफ कर देता, अगे तो कोई बहाना नहीं। चलो हुन, चलो।
0: बड़ी देर हो गई है, आए नहीं अजे तुहाडे मिस्टर सुमित।
1: तुसी चाह पानी का इंतजाम करो, वो आने वाला है। उस समय का खास पाबंद है, इसलिए तो इन्नी तरक्की की है उसने। कल टोरंटो ते आज मास्को, आज टोक्यो ते पलके फ्रांसिस्को। ओदे वर्गा बिजनेस एग्जीक्यूटिव लभ्या नहीं लभदा।
0: इहदा व्याह होया है?
1: मेरा ख्याल है अजे नहीं। हाँ, अज ही ना कोई मेमशेम ले आवे। कॉलेज विच तां कुड़ियां दी लंबी लाइन सी इस दे पिछे।
0: फिर तो वाह वाह फास्ट जा होएगा।
1: नहीं, वो तो सगो बड़ा कंपोज्ड शख्सियत का मालिक है। सिर्फ दो ही टिकाने सन उसते, लाइब्रेरी ते कंटीन। हाँ सच, तेरी चाह का वधिया साथी रहेगा।
0: मेरी चाह? अच्छा, ना बाबा ना, मैं नहीं किसी नाल चाह पीती। उस गड्डी वाले नाल चाह पीती सी ते तुहानू शक हो गया।
1: सॉरी वीना, गुस्सा ना कर। आखिर मैं आदर्श पति हाँ, आदर्श इंसान तो नहीं जो शक भी ना करा। पर सुमीत तो सचमुच बहुत ग्रेट है। किताबां पढ़निया ते जां फिर चाह पीनी। लाइब्रेरी विच वो किसी कुड़ी नू दुआले नहीं सी फटकन दिंदा ते कंटीन विच कान बन जांदा। उहदा एक पेट फिकरा हुंदा सी, आई मीन बिजनेस।
0: इहो जिहे बंदे बड़े खुशक सुभाअ दे हुंदे आ।
1: पर सुमीत दी तां खासियत ही हो रही कि उहदे नाल बह के कोई भी बोर नहीं हुंदा। वो अपना काम भी करी जांदा है ते तुहानू भी खुश रखता है। मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का सब तो भरपूर इंसान एहो ही है।
0: मैं नहीं मानती, तुहाडा अजे तक मैं एहो जिहा कोई दोस्त नहीं वेख्या। ओह सुमेश भाई साहब ने इत्थे आके बैठे रहणगे ते बेचारी वोटी घर कल्पदी रहेगी। दुआ जी घर नाल ही चंबड़े रहिंदे ने ते जनानी सारा दिन सौदा वगैरह करती रहिंदी है।
1: नहीं वीना, तेरी ऑब्जरवेशन विच काली है।
0: हो सकदा है, पर तुसी भी अपने दोस्तों की लोड़ तो ज़्यादा ही प्रशंसा करते हो। हुण सुमीत दे इउं गुण गा रहे हो जिवें वह बंदा नहीं सगो देवता होवे।
1: खैर, सुमीत सैपरेट चाह दा शौकीन है, ख्याल रखी।
0: आउण वाला आए तो सही, तुसी तो पहले खाम खा फिक्रमंद हो गए हो।
1: मैं शर्त लाउना कि तेरा मिस्टर आदर्श भुल जाएगा।
0: शर्त ना लाओ, हार जाओगे। जो सी वो ओह सी।
1: रही शर्त?
0: रही शर्त।
1: वो आ गया पूरे 2 बजे।
3: हेलो कुमार।
1: हेलो सुमित, वेरी गुड। मैनू खुशी है कि तू अपनी सेहत नु बड़ा संभाल के रखा होया।
3: पर तेरी ये गोगड़ बहुत बुरी है।
0: नमस्ते।
3: नमस्ते।
1: हो सच में भूल ही गया, ये मेरी वाइफ है वीना। ते वीना, सुमित बारे तो तू जानदी है?
3: भाभी जी मेरे बारे किवें जानदे ने? मेरा ख्याल है मैं पहले तो कदे भी इन्हां नु मिलिया।
0: मैं पानी लेके आई।
3: भाभी जी पानी नहीं चा, दूध पत्ती तेज, मिठे पानी का परहेज।
0: अच्छा, पहला पानी ते फिर चा।
3: मंजूर है।
1: लो जी, साडा पता तो कटिया गया। ये भी चाह दे शौकीन ते तू भी कंटीन दा कान। याद है?

0: ठीक है, पर तू हजे पप्पू ही
1: एलो
0: है।
1: पानी।
0: थैंक यू। माफ करना भाभी जान, तो आडे पति देव नु कॉलेज दी लड़कियां पप्पू कहंदियां हुंदियां सी। फाइनल डे उत्ते तां कुड़ी ने नु स्टेज उत्ते निप्पल वाली बोतल भी प्रेजेंट कर दित्ती सी।
2: पहला हसो रज के हसो, हड्डा साहब कहंदे हुंदे सन कम करदे रोना नहीं चाहिदा, रोन लग्या किसे वल वेखना नहीं चाहिदा, वेखन लग्या हसना नहीं चाहिदा, ते हसन लग्या बोलना नहीं चाहिदा। तुसी होर हसो।
0: इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।
3: हां सुमित, ये साढ़े चाचा जी ने, चाचा दलील सिंह।
0: तुसी बैठो चाचा जी।
2: नहीं, मैं शीशा फिट करना है, पर पहला चाह बनावांगा।
1: चाचा मैं पानी तर दिता है, बना लवांगी।
2: नहीं बेटा, तुसी बर्तन ला लियो, मैं बना लवांगा।
0: सुमित, भाभी तो चंगी है।
3: हाँ भरा, पर तू मेहरबानी रखी, कॉलेज वाली आदत छड़ दे।
0: हैं? ये तो तेरा वहम है पप्पू।
3: की करा, ये भी तेरे वांग चावा दी है।
0: पर चंगी कुड़ी लगती है, गॉड ब्लेस हर।
3: पर ये दस कि तू अजे व्याह क्यों नहीं करवाया?
0: साफ कर ले, क्योंकि अजे मैं बहुत बिजी हाँ।
3: साथ दी जरूरत महसूस नहीं होंगी?
0: होंगी है, पर की करा, मेरी कंपनी नू मेरी जरूरत इस तो भी वध दे।
3: ये तो वादू गल है।
0: मैं वादू गल विच विश्वास नहीं रखता, यू नो आई मीन बिजनेस।
1: कुमार जी जरा अंदर आना।
3: इत्थे दस दे सुमित कोई ओपरा है?
1: नहीं नहीं, तुसी जरा अंदर आओ ना, तुसी पूछो ना।
4: ना भाई, तू आपे पूछ ले।
1: तुसी पूछो ना।
0: की गल हो गई?
1: सुमित जी, तुसी एक बार दिल्लियों अजमेर तक गड्डी विच सफर कीता सी ना, 4 साल पहले।
0: वो तो मैं कई बार कीता है।
1: सर्दियां सन, तुसा ग्रे कलर का सूट पाया होया सी, लाइट ब्लू शर्ट ते नाल मैचिंग टाई, तुहाडे हाथ विच एक मैगजीन सी ते एक अखबार, तुहाडे नाल एक जनाना सवारी बैठी सी, तुसी उसनू राह विच चाह भी पिलाई सी।
0: जरूर इस तरह होया होगा, पर मैनू याद नहीं। क्यों, की गल हुई?
3: कमाल है यार, कोई तेरे ते मर रहा है तो तेनू खबर ही नहीं।
0: मैंने सचमुच कुछ भी याद नहीं।
3: श्रीमान जी, मेरी डियर पत्नी ने तुहाड़े नाल सफर कीता सी।
0: अच्छा?
3: वो तो तुहाड़े नाल बड़ी दूर तक जाने लिए तैयार सी, पर जनाब खोए होंगे किसे बिजनेस के चक्कर विच।
0: हट, माफ करना भाभी जी, मैं याद के मामले में काफ़ी कमजोर हाँ, मैं तुहाड़ी शान के खिलाफ कोई गुस्ताखी तो नहीं की थी।
3: सुमित, तू इत्थे चर्चा का विशा बनया होया सी, असी किसे आदर्श इंसान की भाल कर रहे सां, ते वीना तेरा नाम पता जाने बगैर ही तेनू एक भरपूर शख्सियत के रूप में पछाण रही सी।
0: ओह, थैंक यू वेरी मच भाभी जी, थैंक यू वेरी मच।
3: हुण तो मेरा भी सिर मान नाल उच्चा हो रहा है। वीना, तेरी चॉइस ठीक सी, पर सुमित जरा ख्याल रखी, ये तेरे वल अगे ही बहुत खिंची हुई है। ओह, ये की होया?
2: शीशा टूट गया है।
1: चाचे का हाथ लहू लुहान हो गया।
2: ओहो, कोई गल नहीं बेटा, हथौड़ी शीशे ते बज गई सी ते शीशा मेरे हाथ ते।
1: चाचे का तो हाथ ही चीरिया गया।
3: ये शीशा ही बच सकना है। चाचा तुसी रहन दो, इनू आपे कोई मजदूर ला लवेगा।
2: नहीं बेटा, शीशे का की कसूर है? कसूर तो मेरा अपना है, मैं डॉक्टर कोलों पट्टी करवा आना। हाँ सच, बेडरूम विच नंगे पैरी ना जाना, सारे कमरे विच शीशे दिया किरचां खिलर गईयां ने।
5: हुणे तुसीं सुन रहे सी पंजाबी नाटक फर्श विच उग्गिया रुख। आकाशवाणी दा इह जलंधर केंद्र है, रात दे 10 बज चुके ने। पेश ने मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशां दे हिंद प्रशांत दौरे तहत अज इंडोनेशिया दे जकार्ता पहुंचे। गृह अते सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारी लहर सुधारां, डिजिटाइजेशन अते पेशेवर प्रबंधन राही विस्थार दे एक नवे गेड़ विच दाखल हो रही है। पाकिस्तान दे कब्जे वाले जम्मू कश्मीर विच चल रहे विरोध प्रदर्शनां विचकार उत्थों दे लोकां ने भारत सरकार तों मदद की अपील की। ब्रिक्स दीयां नशा विरोधी एजेंसियां दे मुखियां दी मीटिंग अज गुवाहाटी विच शुरू हुई। देश अज भारतीय जनसंघ दे संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी दी 125वीं जन्म वरेगंढ दे

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लोहों सुनो हिंदी कवि गोष्ठी, भाग लैण वाले कवि ने प्रेम विज, सागर सूद, संजय, वीरेंद्र अदब ते सिमर सिदोश।
1: चलिए आज फिर कविता की बात करते हैं। कविता जो आकाश से उतरती है उड़न खटोले पर बैठकर, कविता पर्वत से भी उतरती है, कविता नदी की लहरों के साथ साथ चलती है। कविता साहित्य की वो विधा है जो सुकून देती है, तपते हुए हृदय को भी शीतलता प्रदान करती है। तो चलिए आकाशवाणी जलंधर की ओर से आयोजित इस काव्य गोष्ठी में हम ऐसी ही भावनाएं लेकर हमारे साथ जुड़ बैठे कुछ कवियों को शुमार करते हैं। उनकी कविताओं का आनंद मानेंगे हम, उनकी गजलों का आनंद मानेंगे हम। और मैं कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व थोड़ा थोड़ा परिचय कवि साहिबान का देना चाहूँगा। आज की इस कवि गोष्ठी में मेरे साथ हैं श्री प्रेम विज जी। प्रेम विज कविता कहते हैं, कहानी भी लिखते हैं, साहित्यकार हैं, चिरकाल से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। श्री सागर सूद संजय,
2: नमस्कार।
1: छोटी सी उम्र में जितनी उपलब्धियां सागर सूद संजय ने हासिल की हैं वो मुकाम बहुत बहुत ऊंचा है, पर्वत से भी ऊंचा है, सागर से गहरा है। जैसे इनका नाम ही सागर है, इनकी उपलब्धियां भी सागर से गहरी हैं। श्री वीरेंद्र अदब ये जलंधर से हैं, कविता लिखते हैं, बहुत अच्छी कविता कहते हैं। स्वागत है इनका आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में। और इनके साथ मैं नाचीज़ सिमर सदोश, मैं भी कविता भी लिख लेता हूँ, कहानी भी लिखता हूँ और व्यवसाय के रूप में मैं पत्रकार हूँ। तो चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले प्रेम विज से हम अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि कोई कविता अच्छी सी जो सुकून प्रदान करे हमें भी और हमारे श्रोताओं को, वो कविता प्रस्तुत करें। श्री प्रेम विज,
3: धन्यवाद सिमर जी, बहुत अच्छा परिचय दिया
1: जी। जी
3: पेश है कविता। घरोंदे चांदनी के मीत मेरे मन बनाता है,
2: क्या बात है।
3: घरोंदे चांदनी के मीत मेरे मन बनाता है, सुलगती धूप के नीचे कोई सपने जलाता है।
2: क्या बात है, अभी सब बहुत अच्छे।
3: घरोंदे चांदनी के मीत मेरे मन बनाता है। शुक्रिया दोस्तों।

0: में गगन की नील नहरों में उगे ये द्वीप तारों के, गगन की नील लहरों में उगे ये द्वीप तारों के, कभी जलते कभी बुझते, कभी जलते कभी बुझते नैन उजले मीनारों के।
1: क्या बात है, वाह वाह।
0: कभी जलते कभी बुझते नैन उजले मीनारों के, न जाने कौन जगती रोशनी को यूं बुझाता है, सुलगती धूप के नीचे कोई सपने जलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गीला बहुत कोमल, बहुत गीला बहुत कोमल कवारी चांदनी का तन,
1: कवारी चांदनी का तन,
0: बहुत गीला बहुत कोमल कवारी चांदनी का तन है, ऐसे लग रहा जैसे नहाया दूध में जो वन।
1: क्या बात है, क्या तसव्वुर है ये।
0: है ऐसे लग रहा जैसे नहाया दूध में जोवन,
2: जोवन
0: सहर उठती है परछाई, सहर उठती है परछाई, बदन चेहरा छिपाता है, सुलगती धूप के नीचे कोई सपने जलाता है। इन पंक्तियों पे गौर चाहूंगा। जो सूरज रोज आता है, जो सूरज रोज आता है, जो तारे रोज आते हैं, जो सूरज रोज आता है, जो तारे रोज आते हैं, बिना तेरे घरों दे चांदनी के टूट जाते हैं, बिना तेरे घरों दे चांदनी के टूट जाते हैं, मेरा मन चांदनी की मौत पे आंसू बहाता है,
1: चांदनी की मौत पे,
0: मेरा मन चांदनी की मौत पे आंसू बहाता है, सुलगती धूप के नीचे कोई सपने जलाता है, घरों दे चांदनी के मीत मेरे मन बनाता है, घरों दे चांदनी।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।
2: धन्यवाद। कभी जलते कभी बुझते थी, तो ये थे प्रेमबीत जी। अब मैं जिस शख्स को दावत देने जा रहा हूँ, वो किसी परिचय के मुताज तो नहीं है, लेकिन सागर साहब कविता तलफ़ में भी, गज़ल तलफ़ में भी कहते हैं और तरन्नम में भी, और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, करूँगा उनसे कि कृपया अगर वो हमें तरन्नम में कोई गज़ल सुनाएं तो माशाल्लाह बहुत खूब।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सदोष भाई।
2: जनाब सागर सूद संजय जी।
1: सिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब दोस्तों को नमस्कार। चार मिसरे
2: जी,
1: सबसे पहले
2: जी स्वागत है। अरशाद,
1: खुद को ही समर्पित कर रहा हूँ जो दिल कर रहा है आजकल।
2: अरशाद
1: के बहुत दिल भर चुका है, खूब रोना चाहता हूँ, बहुत दिल भर चुका है, खूब रोना चाहता हूँ, मैं माँ की गोद में सर रख के सोना चाहता हूँ, और जिसे दौलत या शोहरत से नहीं मतलब कोई भी, वही मासूम बच्चा फिर से होना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया।
1: अपने अंदाज से कुछ अलग रंग, चार मिसरे याद देखिएगा कि उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया, उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया, अपने दिल को दुखाना छोड़ दिया, उसकी गलियों में जाना छोड़ दिया, अपने दिल को दुखाना छोड़ दिया, और वो भी मेरा नहीं हुआ सागर जिसकी खातिर जमाना छोड़ दिया।
0: सागर जी बहुत
1: बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी मेरा नहीं हुआ सागर जिसकी खातिर जमाना छोड़ दिया। और सुरेश भाई गजल आपका हुक्म तरन्नुम में कहने का प्रयास कर रहा हूँ।
0: स्वागत, स्वागत।
1: मतलब देखिए, दिल किसी पर निसार मत करना, दिल किसी पर निसार मत करना, यार भूले से प्यार मत करना। शुक्रिया। यार भूले से प्यार मत करना।

0: शेर देखिएगा।
1: जी प्रसाद।
0: लोग संग दिल हैं जख्म देते हैं,
2: क्या बात है।
0: इन पे तू एतबार मत
2: वाह
0: करना।
2: वाह सुंदर,
0: शुक्रिया
2: वाह वाह
0: जी। इन
2: सागर
0: पे
2: जी,
0: तू एतबार मत
2: बहुत
0: करना,
2: बढ़िया, बहुत खूब।
0: मांग लेना मैं जान दे दूंगा,
1: वाह वाह वाह, मांग ले।
0: मांग लेना मैं जान दे दूंगा, पीठ पीछे से वार
2: वाह
0: मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। मांग लेना मैं जान दे दूंगा, पीठ पीछे से वार मत
1: करना।
0: करना। और शेर देखिएगा। सर पे बोझा है जिम्मेदारी का,
1: वाह,
0: सर पे बोझा है
1: जिम्मेदारी
0: जिम्मेदारी का, तू मेरा इंतजार मत करना।
1: करना।
0: शुक्रिया जी, बहुत बहुत
2: वाह
0: शुक्रिया
2: वाह
0: कि
2: मत
0: तू
2: करना,
0: मेरा
2: बहुत सुंदर,
0: इंतजार
2: मत
0: मत
2: करना,
0: करना।
2: बहुत
0: और
2: करना।
0: मक्ता समर्पित कर रहा हूँ।
2: अरे स्वागत
0: दिल
1: स्वागत।
0: किसी का दुखा के ऐ सागर,
1: आहा वाह वाह वाह, फिर से
2: बहुत
1: कहिए जी,
2: सुंदर।
1: कमाल है।
0: दिल किसी

0: करे ना
1: बहुत अच्छे।
0: दिल किसी पर निसार मत करना,
1: बहुत
0: यार भूले से प्यार मत करे ना। बहुत बहुत
1: वाह जी
0: शुक्रिया।
1: वाह, बहुत खूब।
2: वाह, दिल किसी पर निसार मत करना, यार किसी से प्यार मत करना। कमाल है सागर सूद साहब।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो ये थे श्री सागर सूद संजय जी, जिनका कलाम इतना खूबसूरत और इतना सुंदर, क्या बात है। मेरी ओर से दाद भी, मेरी
1: बहुत
2: ओर
1: बहुत
2: से स्वागत भी।
1: शुक्रिया सर।
2: तो अब मैं दावत देने जा रहा हूँ श्री वीरेंद्र अदब जी, ये कविता कहेंगे। कविता से सुकून मिलता है, जैसे मैंने पहले कहा, वीरेंद्र अदब जी जलंधर से हैं। स्वागत है जी वीरेंद्र अदब जी इस कवि गोष्ठी में। आप आइए और कविता सुनाइए।
1: मेरी रचना है, बंदे तेरी हस्ती है क्या?
3: तेरी
1: तू
3: हस्ती,
1: कौन है? तेरी हस्ती है क्या?
0: वाह।
1: कुछ भी नहीं है, जो कहलाए थे सिकंदर, खबर उनकी नहीं है।
3: वाह
1: तू
3: वाह
1: कौन
3: वाह,
1: है?
3: खूब।
1: तेरी हस्ती है
0: हा, तेरी
3: क्या
0: हस्ती है
1: कुछ भी
0: क्या?
1: नहीं है।
0: वाह वाह वरिंदर जी,
3: हस्ती
0: वाह।
3: क्या, बहुत खूब।
1: कुछ न होते भी छलक जाती है जा में हस्ती ये, कुछ न होते भी छलक जाती है जा में हस्ती ये, सच यही है, दूर है बड़ी दूर मुकामे हस्ती ये। जिंदगी में जो किए सब सामने मेरे काम है, मेरे ही आगाज का मेरे सामने अंजाम है। आज खुद मैं खुद से ही जब मिलके शर्माने लगा,
3: मुझे
1: कुछ नहीं हस्ती मेरी मुझको
2: वाह
1: समझ आने लगा।
3: वाह
0: हाँ
3: वाह
0: हाँ
3: जी वाह,
0: वाह
3: वाह
0: जी
3: जी, तो बहुत बढ़िया।
1: मैं कभी किसी चश्मे तर का अलमदद न बन सका, मैं कभी किसी चश्मे तर का अलमदद न बन सका। बना रहा सदा मैं सितमगर, चारागर न बन सका।
0: वाह,
1: वाह, छूना चाहूँ आसमां, छूना चाहूँ आसमां, इतनी मुझ पर रहमत कहाँ। करम बिन नहीं मिलती शोहरत, अमा ये बिन किस्मत कहाँ। अब जो मेरे चार सू अंधेरा सा है छाने लगा,
3: वाह वाह
0: जी
3: वाह
1: कुछ नहीं हस्ती
2: वाह,
1: मेरी मुझको समझ आने लगा।
3: बहुत
0: वाह
3: सुंदर,
0: वाह
3: बहुत बढ़िया।
1: ख्वाहिश थी मेरी बनकर चांद करूं रोशन जहां,
3: बन के
2: ख्वाहिश
3: चांद,
2: थी मेरी
1: ख्वाहिश थी मेरी बनकर
3: बन
1: चांद करूं रोशन जहां, दिले हजी को दूँ सकूं बिन रजा तेरी मुमकिन कहाँ। टूट जाता है बशर जब जिंदगी की राहों में,
3: टूट
1: कह रही है
3: जाता
1: अजल अब आ जा तू मेरी बाहों में। ख्वाबों
0: वाह
1: का गुलशन, ख्वाबों का गुलशन मेरे सम्मुख जो जल जाने लगा, कुछ नहीं हस्ती में।

0: मुझको समझ आने
1: लगा,
0: प्रभु की बंदगी बिना ये जिंदगी इल्जाम है। प्रभु की बंदगी बिना ये जिंदगी इल्जाम है, मुफलसों की सेवा ही प्रभु बंदगी का नाम है।
2: क्या बात है।
0: गम में भी हंस कर जिया, ऐसी तबीयत है मेरी, कर्म से मिलता है सब, यही नसीहत है मेरी, कर्मों का है फल अदब, जो है मुझको रुलाने लगा।
2: क्या बात है।
0: कुछ नहीं हस्ती मेरी, मुझको समझ आने
2: लगा।
0: कुछ नहीं हस्ती मेरी, मुझको समझ आने लगा।
2: बहुत अच्छे वीरेंद्र जी,
3: प्रभु की बंदगी बिना ये जिंदगी इल्जाम है। तो ये नज़म, ये रचना प्रस्तुत कर रहे थे श्री वीरेंद्र अदपति।
2: क्या बात है वीरेंद्र जी, बहुत अच्छे। और इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं अब आवाज़ देने जा रहा हूँ उस इंसान को जो वाकई किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जलंधर से हैं श्री सिमर सदोष साहब। मुझे चार मिसरे याद आ जाते हैं उनको देखकर कि मोहब्बत की रिवायत को यूं हम दोनों निभाएंगे। कभी तुम याद आ जाना, कभी हम याद आ जाएंगे, और खफा होने नहीं देंगे कभी एक दूसरे को हम। कभी तुम मुस्कुरा देना, कभी हम मुस्कुराएंगे। तो जिनके चरणों में बैठने के लिए हम भी व्याकुल रहते हैं, तो आइए सुनते हैं उनको, सिमर सदोष साहब।
3: मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ सागर साहब। तो संजय जी, मैं इजाज़त चाहूँगा आप सभी से।
2: स्वागत है।
3: हम मानवता के रक्षक और शांति के पुजारी, सिख पंथ की पहली पातशाही बाबा गुरु नानक देव जी का पर्व मना रहे हैं। एक आध दिन में है
2: जी।
3: तो मैं, अगर आप इजाज़त दें, तो मैं चार चंद पंक्तियाँ बाबा गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ अपनी अकीदत के शब्द बोल। धन्य धन्य ये दुनिया कहे उसको, धन्य धन्य ये दुनिया कहे उसको, जिसको आप संवारा हो गुरु नानक। धन्य धन्य ये दुनिया कहे उसको, जिसको आप संवारा हो गुरु नानक। जिहवा उसकी आप ही शुद्ध हो जाए, जिहवा उसकी आप ही शुद्ध हो जाए, मुख से जिसने उच्चारा हो गुरु नानक। तो पंक्तियां सुनिएगा जी। जिसने कल को पार उतार डाला,
2: जिसने कल को भी पार उतार डाला,
3: सच्चा सुच्चा वो पीर है गुरु नानक। मीर मीरों का कहता है जग सारा, ऐसा उच्च का पीर है गुरु नानक। ऐसा उच्च का पीर है गुरु नानक। तो एक गजल
2: जी स्वागत
3: प्रस्तुत करना चाहूंगा।
1: स्वागत स्वागत
3: सागर साहब
2: जी
3: की गजल आपने कोयल की मीठी आवाज में सुनी, तो आप तलफज पे भी मेरी गजल सुनिएगा। गजल से पहले चंद पंक्तियां, एक कथा मैं पेश करना चाहूंगा।
1: स्वागत।
3: कहो तो बाल पर लिख दो।
1: कहो तो
3: सागर सुन
2: जी, जी स्वागत।
3: कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं।
2: क्या बात है, वाह वाह।
3: कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं, कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं। कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं, कहो फूलों की पत्ती पर, कहो तो शूल पर लिख दूं। कहो फूलों की पत्ती पर, कहो तो शूल पर लिख दूं, तुम्हारा नाम प्यारा है महज इस ख्याल से लिख
2: दूं,
3: तुम्हारा नाम प्यारा है। कहो तो बाल पर लिख दूं, झुकाकर डाल पर लिख दूं, कहो तो मानसर जाकर कमल की पांत पर लिख दूं, तुम्हारा नाम प्यारा है महज इस ख्याल से लिख दूं।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: तो एक और मुक्तक
2: जी
3: मैं पेश करना चाहता।
2: स्वागत है
3: सागर साहब। ये आपकी नजर,
2: आपकी
3: गजल को सुनकर मुझे ये कथा याद आया
2: है।
3: कुछ इस तरह से वक्त के तेवर बदल गए। कुछ इस तरह से वक्त के तेवर बदल गए, कल तक थे मेरे मेहरबान, अक्सर बदल गए।

0: वाह जी वाह,
1: कल
0: बहुत
1: तक थे मेरे मेहरबान यकसर बदल गए।
0: वाह जी वाह जी,
1: सोचो
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बोले
1: चाहूंगा,
0: जी।
1: वो गली रह गुजर बनी जिनके सबब दोस्तों, वो गली
0: अरे
1: रह गुजर बनी
0: जिनके सबब
1: जिनके
0: दोस्त।
1: सबब दोस्तों, अफसोस उस गली से वो घर बदल गए। अफसोस उस
0: वाह
1: गली से वो
0: वाह जी
1: घर
0: वाह
1: बदल
0: जी वाह,
1: गए।
0: वाह वाह वाह
1: एक और
0: जी
1: कथा फिर मैं
0: जी
1: छोटी सी
0: जी
1: छोटी गजल है,
0: स्वागत
1: इसलिए ये खिताब
0: जी जी
1: मैं आपकी
0: स्वागत
1: नजर कर रहा
0: स्वागत
1: हूं।
0: स्वागत है।
1: वफा की डगर पर जरा दूर चल गए,
0: हाँ वफा की
1: वफा
0: डगर
1: की
0: पर
1: डगर
0: जरा
1: पर
0: दूर चल गए।
1: जरा दूर चल के वो फिर रूठ बैठे हैं पहलू बदल के।
0: पहलू बदल
1: वफा
0: गए।
1: की डगर पर जरा दूर चल के वो फिर रूठ बैठे हैं
0: पहलू बदल
1: पहलू
0: गए।
1: बदल के, वो कर देंगे अफशां ये राजे मोहब्बत।
0: वाह
1: मोहब्बत
0: वाह
1: करो, वो कर देंगे
0: वाह
1: अफशां ये राजे मोहब्बत,
0: वाह
1: जो आंखों से निकलेंगे
0: वाह
1: आंसू पिघल कर।
0: सही बात,
1: वो
0: जो
1: कर
0: आंखों से
1: देंगे अफशां
0: निकलेंगे आंसू
1: ये राजे मोहब्बत, जो आंखों से निकलेंगे आंसू
0: पिघल
1: पिघल
0: कर।
1: कर। तो ये गजल पेशे खिदमत है, छोटी बैर की गजल है।
0: जी।
1: जिसको दर्द का पास नहीं है, जिसको दर्द का प्रेमी,
0: हाँ
1: हाँ
0: जी
1: जी हाँ
0: जी
1: जी, ये शेर आपकी नजर।
0: हाँ स्वागत, शुक्रिया शुक्रिया।
1: जिसको दर्द का पास नहीं है उसका दर्द भी खास।
0: वाह
1: वाह
0: वाह वाह,
1: वाह
0: क्या बात
1: बहुत
0: है,
1: अच्छा जी।
0: दर्द भी
1: जिसको दर्द का पास
0: नहीं
1: नहीं
0: है
1: है
0: उसका,
1: उसका
0: दर्द
1: दर्द
0: भी
1: भी
0: खास
1: खास नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है।
1: मन बंजर तन खंजर उसका,
0: अच्छा क्या
1: तन
0: बात है।
1: बंजर मन बंजर
0: तन
1: तन
0: खंजर
1: खंजर
0: खंजर उसका।
1: उसका, उसे नेह की आस
0: वाह
1: नहीं।
0: वाह वाह, सही बात है,
1: वाह
0: उससे नेह की आस नहीं है, बिल्कुल
1: मन
0: बिल्कुल सही
1: बंजर
0: बात है।
1: तन खंजर उसका, उसे
0: समझ
1: नेह
0: गए,
1: की आस
0: वाह
1: नहीं
0: खूब
1: है।
0: वाह
1: शबनम
0: खूब।
1: को वो क्या समझेगा,
0: वाह जी, शबनम को
1: शबनम को
0: वो क्या
1: वो
0: समझे।
1: क्या समझेगा, लब पे जिसके प्यास नहीं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह
1: वाह
0: वाह
1: क्या
0: वाह,
1: बात
0: जवाब
1: जी,
0: नहीं है ये,
1: शबनम को वो क्या
0: वाह
1: समझेगा,
0: वाह वाह, बहुत खूब,
1: जिसके लब पे प्यास
0: प्यास नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है। कैसे आ पाएगा परिंदा,
0: वाह खूब
1: कैसे
0: वाह,
1: आ कैसे
0: क्या पाएगा।
1: आ पाएगा परिंदा जंगल में रुख घास।
0: ओ वाह वाह वाह, क्या कटाक्ष
1: कैसे
0: है,
1: आ पाएगा
0: बहुत बहुत अच्छे,
1: परिंदा
0: बहुत अच्छे नंबर जी।
1: जंगल में
0: रुख
1: रुख
0: खास
1: घास
0: नहीं है।
1: नहीं है, फाका कशी मुकद्दर जिसका, फाका कशी
0: मुकद्दर
1: मुकद्दर
0: जिसका।
1: जिसका, उसके मन उल्लास।
0: वाह वाह
1: फाका
0: वाह वाह वाह
1: कशी
0: वाह, बहुत बढ़िया,
1: मुकद्दर
0: वाह
1: जिसका, उसके मन
0: उल्लास
1: उल्लास
0: नहीं
1: नहीं है,
0: है।
1: बिन मकसद क्या हासिल सफरी, बिन मकसद
0: क्या
1: क्या
0: हासिल।
1: हासिल सफरी, ये मजमा कुछ खास नहीं है।
0: क्या बात है, वाह वाह
1: बिन
0: वाह
1: मकसद क्या हासिल सफरी,
0: वाह,
1: ये मजमा कुछ खास
0: खास
1: नहीं
0: नहीं
1: है।
0: है।
1: तो मैं मक्ता पेश कर रहा हूँ जी,
0: हाँ जी हाँ
1: स्वागत
0: जी।
1: है। आओ ढूंढे वो बाशिंदा,
0: वाह वाह वाह, आओ
1: आओ
0: ढूंढे वो
1: ढूंढे वो बाशिंदा
0: बाशिंदा।
1: जिसका हिया उदास। आओ ढूंढे
0: वाह
1: वो
0: वाह
1: बाशिंदा
0: वाह, जिसका हिया
1: जिसका
0: उदास
1: हिया
0: नहीं,
1: उदास
0: उदास नहीं, वाह
1: नहीं
0: वाह वाह
1: है,
0: सिमर जी, बहुत अच्छे,
1: जिसको
0: बहुत
1: दर्द का
0: बढ़िया जी, बहुत
1: पास
0: बढ़िया,
1: नहीं
0: हाँ हाँ
1: है
0: हाँ
1: उसका
0: उसका
1: दर्द
0: दुख
1: भी खास
0: खास नहीं,
1: नहीं
0: बहुत
1: है।
0: अच्छे,
1: बहुत
0: बहुत अच्छे
1: शुक्रिया,
0: सिमर
1: बहुत
0: जी,
1: शुक्रिया जी, नवाजिश
0: बहुत
1: साहब।
0: बढ़िया।
1: तो साहिबो मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा समय आकाशवाणी वालों ने मैं और दे दिया है, तो क्यों ना हम कविता का छोटी छोटी कविता, छोटी सी गजल, कुछ शेर,
0: ठीक
1: तो एक दूसरा दौर चला लें। तो दूसरे दौर में मैं प्रेम विज जी को फिर
0: शुक्रिया
1: गुजारिश करूंगा कि वो कोई
0: शुक्रिया
1: छोटी सी कविता नज़्म
0: शुक्रिया सिमर
1: प्रस्तुत
0: जी,
1: करें।
0: छोटी सी कविता। स्वागत भी सब। सांप दुविधा में है, हाँ, सांप दुविधा में
1: दुविधा
0: है,
1: में है।
0: आदमी इन दिनों सांप से अधिक बेशाला हो गया है।
1: वाह वाह,
0: आदमी
1: आदमी
0: इन
1: इन
0: दिनों
1: दिनों
0: सांप
1: सांप
0: से
1: से
0: अधिक
1: ज्यादा,
0: बेशाला हो गया है, इसलिए खबर है कि सांप आदमी से डरने लगा है।
1: अच्छा
0: इसलिए खबर है कि सांप आदमी से डरने लगा है। सांप दुविधा में है, सांप दुविधा में है, कहाँ रहे बांबियों में, तो अब आदमी रहने लगा है।

0: सांप दुविधा में है, कहाँ रहे। बॉम्बियों में तो अब आदमी रहने लगा है, सांप भयभीत है आदमी से। सांप
1: वाजी
0: भयभीत है आदमी से, कब डस ले, कब उसे पालतू बना नाचने जाए।
1: वाह वाह वाह वाह
0: सांप भयभीत है आदमी से, कब डांस ले उसे पालतू बना नाच निचाए, और जब जी भर जाए तो उसकी खाल की तिजारत करे। सांप दुविधा में है कि अब भी उससे भी ज्यादा विशाला हो गया है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छे
0: तो
1: सर,
0: अब मैं
1: बहुत
0: गुजारिश
1: खूब।
0: करूंगा जनाब सागर सागर संजय जी से कि वो अपनी कोई नज़म या गज़ल पेश करें।
1: हाँ, इजाज़त हो तो दो चार रुबाई ही कह देता हूँ,
0: हाँ जी
1: समय की
0: जी जी
1: नज़ाकत को देखते हुए,
0: हाँ
1: कि तू जो मुझसे खफा नहीं होता,
0: वाह
1: तू जो मुझसे खफा नहीं
0: नहीं
1: होता,
0: होता।
1: पास मेरे भी क्या नहीं होता।
0: ओहो हो
1: कि
0: वाह
1: तू जो मुझसे खफा नहीं होता, पास मेरे भी क्या नहीं होता, और एक शिकवा रहेगा बस तुझसे, काश तू बेवफा नहीं होता। कि काश तू बेवफा नहीं होता। और चार मिसरे देखिए, कब कहा मैंने मुझको खुदा चाहिए, कि कब कहा मैंने मुझको खुदा चाहिए, बस वफाओं के बदले वफा
0: वफा
1: चाहिए।
0: चाहिए। वाह वाह
1: कब
0: वाह
1: कहा
0: वाह
1: मैंने मुझको खुदा चाहिए, बस वफाओं
0: वफाओं
1: के
0: के
1: बदले
0: बदले।
1: वफा चाहिए, और मिल गए हो मुझे तुम सदा के लिए, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए।
0: वाह वाह
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: जनाब
1: शुक्रिया
0: बहुत
1: दोस्तों,
0: सुंदर
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: शुक्रिया।
0: सुंदर। तो अब मैं गुजारिश करूंगा श्री वीरेंद्र अदब जी से कि वो भी इतनी ही छोटी सी एक
1: रचना है नशा।
0: नशा।
1: जी,
0: वाह वाह
1: नशा नहीं ये मौत है युवको,
0: वाह वाह
1: नशा नहीं ये मौत है युवको, नशा ये तुम्हें मिटा देगा, तुम्हारे चाहने वालों को ये खून के अश्क पिला देगा। नशा नहीं ये मौत है युवको, क्यों तुम अपने दुश्मन बनकर अपना ही घर लूट रहे।
0: अपना ही घर
1: जीवन
0: जाओ
1: ये
0: तुम।
1: अनमोल है प्यारो, वाह, जीवन ये सच्ची अनमोल बात,
0: है
1: सच्ची प्यारो, बात।
0: क्यों तुम खुद से रूठ रहे। वक्त अभी बाकी है, नशा ये मौत की नींद सुला
1: वाह
0: देगा।
1: वाह वाह वाह नशा वाह,
0: नहीं ये मौत है
1: बहुत बहुत
0: युवको,
1: शुक्रिया वीरेंद्र
0: नशा
1: जी।
0: ये तुम्हें मिटा
1: और
0: देगा।
1: आज के इस अंतिम दौर की तरफ चलते हैं, और मैं सिमरस दोष जी के विनती करता हूँ कि वो चंद लाइनें आपको समर्पित करेंगे।
0: चलिए एक दो पंक्तियाँ
1: जी
0: पहले
1: स्वागत,
0: गजल के दो शेर कहने से पहले
1: जी स्वागत है।
0: 3 पंक्तियाँ हैं। हक बेहका खा सकता है,
1: हाँ, हक
0: हक
1: बेहक्का
0: बेहका
1: खा
0: खा
1: सकता
0: सकता है, जुल्म कोई भी ढा सकता
1: है।
0: है। हक बेहका खा सकता है,
1: जुल्म
0: जुल्म
1: कोई
0: कोई
1: भी
0: भी
1: ढा सकता।
0: ढा सकता है। धूप किसी की खा जाने को,
1: वाह जी,
0: धूप
1: किसी की खा
0: धूप
1: ले
0: किसी की
1: खा जाने को,
0: खा जाने को, बादल बनकर छा सकता
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: अदब
1: वाह।
0: से ना वाकिफ ये फिर भी,
1: वाह,
0: अदब से ना वाकिफ ये फिर भी हर महफिल में छा
1: छा
0: सकता
1: सकता
0: है।
1: है, बहुत अच्छे,
0: तो एक
1: वाह
0: गजल के दो शेर
1: जी, हाँ जी,
0: पेशे खिदमत
1: जी,
0: हैं। जीना हो तो मुस्कुराना सीखिए,
1: वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह।
1: वाह
0: जीना
1: वाह,
0: हो तो
1: मुस्कुराना,
0: मुस्कुराना सीखिए, आंख के आंसू छिपाना सीखिए।
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: जीना
1: अच्छे,
0: हो तो
1: मुस्कुराना
0: मुस्कुराना
1: सीखिए,
0: सीखिए, आंख के
1: आंसू
0: आंसू
1: छुपाना,
0: छिपाना
1: छिपाना,
0: सीखिए। शेर सुनिए,
1: जी स्वागत,
0: उनसे
1: बहुत बढ़िया।
0: भी जो आपके बदखाह हों,
1: उनसे भी जो
0: उनसे
1: आपके
0: भी
1: बदखाह
0: जो आपके बदखाह हों, कोई वायदा निभाना सीखिए।
1: हो,
0: उनसे भी
1: वाह
0: जो आपके बदखाह हों,
1: उनसे,
0: कोई वादा निभाना सीखिए। अरे गैर से पर्दा किया तो क्या किया,
1: वाह,
0: गैर
1: क्या से
0: से
1: पर्दा किया तो
0: पर्दा
1: क्या
0: किया तो क्या
1: क्या किया,
0: किया, खुद से ही खुद को छिपाना
1: वाह
0: सीखिए।
1: बहुत अच्छे
0: खुद
1: जी,
0: को ही खुद
1: खुद
0: से
1: से छिपाना
0: छिपाना
1: सीखिए।
0: सीखिए। आंधियों के साथ चलिए बारहा,
1: आंधियों के साथ चलिए,
0: आंधियों के
1: के साथ
0: साथ
1: चलिए
0: चलिए
1: बारहा।
0: बारहा, मौसमों से घर सजाना
1: वाह
0: सीखिए।
1: वाह वाह वाह, मौसमों से
0: आंधियों
1: घर
0: अच्छा
1: सजाना
0: के
1: सीखिए,
0: साथ
1: बहुत
0: चलिए
1: अच्छा, बहुत
0: बारहा,
1: बहुत सुंदर।
0: मौसमों से घर सजाना सीखिए। शहर में होगा चरागाह इसलिए,
1: शहर में
0: शहर
1: होगा
0: में
1: चौरागा
0: होगा
1: इसलिए,
0: चरागाह इसलिए, दीप दीपक से जलाना
1: वाह
0: सीखिए।
1: वाह वाह वाह
0: वाह
1: जी, वाह
0: सुंदर,
1: वाह जी,
0: दीप
1: वाह,
0: दीपक से
1: बहुत अच्छे
0: जलाना
1: सिमर जी, बहुत
0: सीखिए।
1: अच्छे, बहुत अच्छे।
0: तो शुक्रिया जी, मैं आज यहाँ

0: हमारे साथ उपस्थित हुए कवियों, शायरों, प्रेमवीर जी का, अदब जी का और सागर सूद संजय जी का, आकाशवाणी की ओर से और अपनी ओर से हृदय से आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने भी इन शायर साहबान का, कवियों का, की शायरी का, कविताओं का आनंद लिया होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।
1: हुणे तुसी हिंदी कवि गोष्ठी सुन रहे सी। पागलन वाले कवि सन प्रेम विज, सागर सूत, संजय, वीरेंद्र अदब ते सिमर सिदोष। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। लो हुण चंद गजलां समात फरमाओ। सब तो पहला चंदन दास दी आवाज़ च एक गजल।

0: ਪੰਕਜ ਉਦਾਸ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਤ 11:05 ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और

0: अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खमेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled."

0: रेडियो को तो सुन रहे हो?
1: मुझे 2-3 महीने हो गए।
0: 2-3 महीने हो गए। ते किहो जिहा लगदा है जदों तुहाडी कॉल प्रोग्राम च लगदी है ते लखां ही दोस्त तुहाडी आवाज़ नूं इस वेले सुन रहे हैं?
1: बढ़िया लगता है, नया एक्सपीरियंस गेन होता है।
0: क्या बात है जी। ते अज कल दी जिहड़ी नवीं पनीरी है,
1: हाँ जी,
0: जिहड़ी ना सौण दा टाइम है ना खाण दा टाइम है,
1: हाँ जी।
0: कुछ अपनी रूटीन बारे शेयर करो। तुसी केड़ी रूटीन फॉलो करते हो?
1: रूटीन में सुबह उठना होता है,
0: अच्छा जी।
1: उसके बाद फिर अपना नहा मुंह के खाना खुना खाकर फिर
0: हाँ जी।
1: एनिमल्स की वो सेवा वगैरह करो। हाँ
0: ओके।
1: जी, उसके बाद अपना जो भी अपना मोटिव है जिंदगी, पढ़ाई करनी पढ़ाई करो, बिजनेस की तरफ है बिजनेस की तरफ करो।
0: नहीं, अभी तो आपने बताया कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
1: तो साथ में बिजनेस भी तो करना पड़ता है।
0: मॉर्निंग टाइम कॉलेज नहीं जाते जी?
1: वो कभी कभी,
0: कॉलेज कभी कभी,
1: हाँ जी,
0: यानी मतलब कि लेक्चर पहले ही बंक करने की प्लानिंग है?
1: नहीं सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं ना।
0: ठीक है। ते जिदा कि कहा जाता वे जीवन पद्धति च, सनातन च, वैदिक च या हिंदुस्तानी जीवन शैली च कहा जाता है कि व्यायाम, स्नान ते ध्यान, यानी कि सब तो पहले आदमी नूं वर्जिश जरूर करनी चाहिए है। ते सवेर की शुरुआत च तुहाडी रूटीन च इंदा मतलब वर्जिश की कोई जगह नहीं है?
1: नहीं, वो दोपहर को करते हैं।
0: मतलब कि जब जागो तभी सवेरा।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: ठीक है जी। ते सुनने वाले दोस्तों नाल आपां एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जी। जिहड़े दोस्तों ने वजन घटाना है उन्हां नूं एक्सरसाइज मॉर्निंग टाइम करनी चाहिए है, ते जिन्हां ने वजन बधाना में या मसल गेन करने हैं उन्हां लई शाम का समा बहुत वधिया हुंदा जी।
1: जी,
0: ठीक है जी। ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम ते अपनी फरमाइश दस दिओ जी, गीत किहड़ा सुनाइए जी?
1: मावा ठंडी छावा।
0: मावां ठंडियां छावां। गायक कलाकार कौन है जी?
1: इतना नहीं पता, बस नाम पता है गाने का।
0: चलो मावां वाला कोई भी गीत सुना देंगे। ते एक गल
1: ओके,
0: दसो जी, लाइफ च की टारगेट रखे जी, किस मुकाम ते पहुंचना है ते अपनी लाइफ नू लेके जाना है जी?
1: ये वैसे प्राइवेट रखे तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ
0: क्या बात है जी।
1: जी,
0: शेयर करन दा मतलब ये हुंदा कि सुनन वाले दोस्तों नू भी कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीध मिले। ठीक है ना जी।
1: हाँ जी,
0: ते चलो कोई गल नहीं जी, अपने
1: मेन
0: अपने
1: मेन तो वो जिंदगी में वही होना चाहिए ना, किसी का पूरा सोचो ना किसी का करो।
0: बिल्कुल जी, क्योंकि वक्त दा पहिया घूम के उत्थे ही आंदा है जी, तुहानू उही मिलना है जो तुसी किसे लिए सोचना है जी। ते
1: हाँ जी,
0: आपा अगर सारयां लिए वधिया वधिया सोचांगे तां रिटर्न दे विच तुहानू वधिया मिलेगा, ये सोचने की गल नहीं है, ये यकीन है जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी, सुनते हैं तुहाडी फरमाइश दा। मावां ते बेस्ड गीत है जी, जसविंदर नरूला ते हरभजन मान दा मावां।
1: ठीक
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: है, थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी। मनजीत
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: कौर बोल रही हैं दिल्ली तो जी। बस
0: होर सुनाओ मनजीत जी, की हाल चाल है तुहाडे ते दिल्ली दे जी?
1: गर्मी बहुत पै रही है, बारिश बुरिश वो घट ही हो रही है, कभी कभी थोड़ी बहुत।
0: जदों जदों बारिश पै जाती है ते फिर भड़ास पै जाती है ना जी।
1: और बाद पढ़ास हो जाती, बड़ी गर्मी हो जाती है।
0: हुण उन्हां नूं पता लगना है, जिन्हां ने अंब खाण तों बाद लस्सी नहीं पीती ना,
1: हाँ अच्छा
0: उन्हां दे पेते निकलनी है जी।
1: गीत
0: ते गीत केड़ा जी?
1: सुना तो अनसराज अनसुबाजी चोरनी।
0: चोरनी जी, है ना जी। ते पूड़े बनाने दा भी मौसम आ गया जी,
1: हाँ
0: तैयारियां कस लईयां जी?
1: बस तैयारियां रहिंदियां साडियां ते।
0: चलो अगली बारी जो तो पूड़े बनाओगे सौंफ जरूर पाना जी, टेस्ट वध
1: हाँ जी
0: जाएगा।
1: हाँ जी
0: फोन
1: ठीक है,
0: करने लई
1: बड़ी याद
0: शुक्रिया
1: है
0: जी।
1: तुहाडी गल।
0: हाँ जी
1: कवालियां भी याद ने
0: ठीक है जी, फोन करे।
1: वालियां।
0: बिल्कुल जी, बस वालियां ही बंदे
1: जी
0: नू सेहत खराब करन ते मन खराब करन दा कारण बन जांदा ना।
1: जी थैंक
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: यू, तुहाडा भी धन्यवाद जी।

गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला दिल सी, काले काले दिल ने चुराया मेरा दिल सी।

0: हेलो,
1: सत श्री अकाल जी। मैं
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी।
1: बंसी लाल, पिंड केचा मोड़ी, जिला अंबाला जी।
0: क्या बात है जी, ते केहो जा मौसम रहा जी अंबाला च? अच्छा
1: अज मौसम तो अली साडा कसर रह गई सी,
0: जी,
1: बारिश नहीं पई अज,
0: भड़ास पै गई फिर।
1: ना पड़ी नहीं जी।
0: चलो जी, ते फरमाइश दस दियो जी, मीह पिया या नहीं
1: पंखु
0: पिया?
1: माला जेड़ा मर्जी ला दो भाई।
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो अश्री भाई नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, थे अपने बारे दस दो जनाब, कौन थे किथो जी?
1: अश्री भाई बिट्टू बोल रहे जी, दूरदर्शन बैकसाइड मंगू सीजन दे
0: जी। ते होर सुनाओ बिट्टू जी, किद्दा दा बीतिया अज दा दिन?
1: बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। ते आकाश वाली गुरे हो ते दिन वधिया निकलदा सदा, आकाश दे प्रोग्राम चलदे रहने ते वधिया लगदा जी।
0: फरमाइश दस दियो जी, गीत केड़ा सुनाइए?

0: हाँ जी, स्वागत है जी
1: हेलो सर
0: प्रोग्राम 'च।
1: जी, सत
0: स्वागत है
1: श्री
0: जी।
1: अकाल। सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी,
1: मनीष
0: ते गीत केड़ा जी?
1: जी गीत मैं सोया ला दो सर जी, चन्न फिक्का फिक्का।
0: जरूर सुनाने हैं जी। फोन
1: हाँ जी,
0: करने लिए शुक्रिया जी।
1: ओके, थैंक यू।
2: किन्ना सोहना है मेरा माही, मेरे चौंदे सामने

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: महेश गर्ग मंडी हरजीराम मलोड़ तो। हाँ
0: क्या बात है जी, तुहाडे सुनेहे भी आंदे आ।
1: जी,
0: ते गीत दी फरमाइश दस दो जी।
1: जोगी रे जोगी तेरे इश्क ने किस तरह रोजी।
0: जोगी रे जोगी नहीं है जी, जोगिए दा होर सुनाने हैं। तुहानू गीत जरूर पसंद आएगा, मनप्रीत
1: ठीक
0: अख्तर
1: है
0: दा
1: ठीक
0: जोगिया।
1: है।
0: अगली बार
1: बिंद्र
0: को
1: की है ठीक
0: नहीं जी, मनप्रीत अख्तर फीमेल
1: है।
0: सिंगर है।
1: धन्यवाद।
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।

0: हेलो,
1: हेलो अश्विनी शास्त्री।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी।
1: मैं बोल रहा
0: अपने बारे दसो, कौन ते कितों बोल रहे हो?

ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ये फरमान पंचम गुरुदेव साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वालों राग सूही विच उचारित है। साहिब फरमाउंदे ने कि हे मेरे मालिक प्रभु, मैं तेरियां बख्शिशां दी कदर नहीं सा जानदा। मैनू निमाणे प्राणी नूं आत्मिक जीवन दी सूझ नहीं सी। मैं ब्रह्म विचार सिमरन ते नेक अमलां तों अणजाण सा। प्रभु तेरी मेहर नाल मैनू सब तों वड्डा ते विशाल गुरु नानक मिल गया, जिसने मेरी लाज रखी ते मैनू तेरे चरण कमलां नाल जोड़ दिता है। ये सब इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने संतां दी अपने प्यारियां दी आप पैज रखता है। मेरे राम राय तू संता का, संत तेरे, तेरे सेवक का।

पाओ किछ नाही, जम नहीं आवै नेरे। सरुण करदिया भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द है।

0: मेरे राम राये, तुम संता का संत तेरे, तेरे सेवक काओ पाओ किछ नाही, जम नहीं आवै नेरे। इस शब्द का गायन किया सिपाही बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। जिहड़े प्राणी उस मालक दे प्रेम रंग विच रंगे रहिंदे ने, उन्हां दे जम्मण मरण दा गेड़ ते दुख समाप्त हो जांदा है, ते उस परमात्मा नाल अगम्मी मेल स्थापित हो जांदा है। पर इसलिए जरूरी है कि उस परवरदिगार दे चरणां च बेनती की जाए, जोदड़ी की जाए, ता ही परमात्मा तुट के किरपा करता है। सेवक सेवै करह अरदास, तू आपे मेल बहाल है पास। गुरबाणी फलसफे मुताबक गुरसिख ने हर दुख सुख विच अकाल पुरख दे सन्मुख एकागरचित हो के अरदास करनी है। सुनदिया डॉक्टर जसवंत सिंह होरां पासों वार्ता गुरबाणी विच अरदास दा संकल्प।
1: अरदास शब्द दीयां जड़ां फारसी अते संस्कृत भाषा विच पईयां होईयां हन, पर हुण इह शब्द अपनी विलक्षण अते सुतंत्र होंद बना चुका है। अरदास शब्द सुनदिआं पढ़दिआं साडा ध्यान सिख धर्म विच हर धार्मिक संस्कार वेले जां किसे कारज दी शुरुआत अते संपूर्णता तों बाद कीती जाण वाली अरदास वल जांदा है। वख वख धर्मां विच अरदास लई प्रार्थना, प्रेयर, दुआ आदि शब्द वरते जाते हैं। पंजाबी विच ही इस दे समान अर्थी शब्द बेनती, जोदड़ी, बिनय, अरजोई आदि देखे जा सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अरदास लई अरदासे, बिनौ, बेनंतिया, बेनंती, बेनती शब्द वरते गए हैं। अरदास अपने तो उच्ची शक्ति अगे कीती जाती है, उस तो कुछ मंगन लई, भुलां बख्शाउण लई, मुक्ति प्राप्ति लई, जां आपो अपनी मनो अवस्था अनुसार गैबी शक्ति नाल वार्तालाप कीता जांदा है। अरदास असल विच हुंदी ही उदों है जदों आत्मा पूरी तरह जागृत हो जावे, क्योंकि इस तों पहलां अरदास हो ही नहीं सकती। धार्मिक समाज विच जो प्रचलित अरदास दा रूप है, उस विच ज़्यादातर तां परमात्मा तों केवल दुनियावी मंगां ही मंगियां जांदियां हन। परमात्मा दी प्राप्ति नाल उस दा कोई वास्ता

कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: दुख दारू सुख रोग भया जा सुख काम न होई तो करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलिहारी कुदरत बसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाल हो जिन की सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वीर शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: हे कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव सहज को जाने पे हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना वो ज्ञान का बद्धा मन रहे ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए।

रंचक रेत खेत तन रिमत दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सोते सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदप भोजन के सब सोज परी बर्दमान होवत नित प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया किरम सिमर स्वामी एक करे कर गले हो कृपाल कृपा निद नानक काट परम परे रे मन मूस बिला मैं करबत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चोलत माया मगन परमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यो मोह बड़े ओ सो कना बोयो बीज अहंग मम अंकर बीतत आवत करत अगना मृत मंजार पसार मुख नरखत पुंचत पुगत पोख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।

माया मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रिधे ना बिचारो, रथ ना सब न गस सिंघासन, शिन में त्याग नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न कहु दिष्ट निहारो, कोट न ओर न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्री पतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत कृपा कर तारो, ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीश्वर, रसक रसक ठाकर गुण गावत, इंदर मनिंदर खोजते गोरख, तरण गगन आवत फुन तावत, सिद्ध मनुख देवर दानव, इक तिल ताको मरम ना पावत, प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति, हर जनता के दर्श समावत, तिसे त्याग आन को जाचे, मुख दंत रसन सगल का सजावत, रे मन मूर सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे समझावत, रे मन मूर सिमर सुख दाता, नानक दास तुझे

पान पान मीठा सुभोजन अंत की बार पोत कत खारी नानक संत चरण समुद्रे पुर माया मगन चले सब डारी सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान।

0: पर दुख हर सर्व रो खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिन सजाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी। साजन मीत सखा हर बंदप जीतान प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समर्थ नानक दा सदा बलहारी।
1: आवधि कट्यो ना जातो प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात बिदे मन दर्शन।

कहो टलगर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी दूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदेश जिस पास बैठियां सो ही है सबना दावे सा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशांदेश जिस पास बैठियां सो

श्लोक संत उदरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन है। निर्मलं संत संगेण ओट नानक परमेश्वर राग जैत श्री दी वार दी 17वीं पौड़ी।

आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेते मन वधिया वधाया राग रतन परिवार परि

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याई।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो, गोबर तरन ना जाए तोती टिका तै जपमाली धान मलेशा खाई। अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम लै जाहे तरन दा महला पहला।
1: मानस खाने करी निवाज, छुरी वगायन तिनगल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरी नाद, उन्ना पियावे ओई साध। कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहया भरपूर। मत्थे टिका तीर तोती का खाई, हाथ छुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेच तान लै पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर किसे न जाना, देख है चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै, अन हजारदा पिटै, तन पिटै पीड़ करीन, मन जुठै चुली परीन। कहो नानक सच त्याई है, सुच होवै तां सच पाया, पौड़ी चितै अंदर सब को। वेख नजरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड़ो वड़ा बड़मेदनी।